0: सुगंधित फूल होता है जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है। और साथ ही बता दें इसकी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक तरोताजा बना रहता है। और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है। इसकी खेती का स्तर काफी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे। आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यवसायिक खेती के बारे में। गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है। और बता दें आपको कि बारहमासी इसकी खेती की जा सकती है। ऐसे में किसान अगर इसकी व्यवसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
1: भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है। भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है। कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है। गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं। इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसकी खेती इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। बात करें इसकी उत्पत्ति की तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मेक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया। आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है।
0: मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं। पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं।
1: अपने औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है। आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है। मोचाने पर सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है।
2: गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में उपयोग किया जाता है काफी तौर पे, और इसको मुख्य तौर पे माला बनाने में काम में लिया जाता है। मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। और अगर इसकी आजकल देखे जाएंगे तो गेंदे के पुष्पों से गुलाल बनाने की विधि भी स्टैंडर्डाइज की जा रही है। और आप देखेंगे ये जो है गेंदा, इसमें एक और मुख्य तौर पे मैं बताना चाहूंगी, ये कैरोटीनॉइड रिच होता है। इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है। तो इसको मुर्गी आहार में मिलाया जाता है और इसकी अंडे का जो पीलापन होता है, एग योक बोलते हैं, उसका पीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग यह है कि ल्यूटिन को कहते हैं कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम में मदद करता है, जिससे और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, तो उससे बचाता है।
0: चाहे फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यवसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं।
1: गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बढ़बार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं, और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं।
2: जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर एक पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में, लगभग 5-6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मेक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है। उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश

0: दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो चुका है और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफी इसका प्रचलन हो रहा है।
1: गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवम्बर दिसम्बर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए।
0: इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको एक हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है।
1: गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में मिला दे ताकि उपज अच्छी मिल सके। 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दे। यूरिया को 3 बराबर भागों में बांटकर एक भाग एवं सिंगल सुपर फास्फेट व पोटाश की पूरी मात्रा को रोपाई के समय दें। गेंदे की बुआई अगर किसान लाइन में करें तो लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई गेंदे की खेती को थोड़ा ऊंचाई दें ताकि पानी का जमाव ना हो सके जिससे फसल को नुकसान हो सकता है।
0: गेंदे को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करने पड़ेंगे। नर्सरी की बेड की लंबाई आप 3 मीटर से 4 मीटर तक रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाएगी और इसको ऊंचा रखना पड़ेगा ताकि इसमें पानी रुके ना, तो उसकी हाइट आप रख सकते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर। आपको इसको पंक्ति में लगाना पड़ेगा, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जब आप इसको लगा दीजिएगा तो आपको इसके ऊपर FIM से ढक दीजिएगा। आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है रोपण के लिए और हम इसको मेन मुख्य खेत में लगा सकते हैं। मुख्य खेत में भी इसको लगाने की अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते थे और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पूसा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा।
2: कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है।
2: इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आप सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में ये अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फास्फोरस लगता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए।
0: किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे एक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा वसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है।
2: इसमें दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा जिसको जाफरी भी कहा जाता है वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है।
1: वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कोच आते हैं।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी वैरायटीज निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहाँ हरियाणा में यहाँ से 2 वैरायटीज निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी।
0: गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
1: रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रुपाई के 60 से 70 दिन पर गेंदा में फूल आता है जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए।
2: गेंदे में शीर्ष नोचन भी किया जाता है जिसे आमतौर पर पिंचिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे किया जाता है क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। अगर शीर्षनोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी आंतरिक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षनोचन की क्रिया को करते हैं, उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसमें हम 4 से 5 बाई तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पे निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड आती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर।
0: फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है।
1: अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक चूर्णी फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़ कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें।
2: अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीजन में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफी ज्यादा आते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोस्टॉक रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे देश की सरकार और साथ ही कृषि विभाग नित नए प्रयास करते रहते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और समय समय पर हमारे किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसके बारे में भी आपको जागरूक करते हैं।
1: समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बम्पर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहा है। गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है, जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी देने वाली फसल है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों को फूलों की खेती में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। सरकार किसानों को गेंदे की खेती करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
2: किसान भाइयों, हमारी जो जनपद में योजना संचालित है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत जो फूलों की खेती करके किसान भाई एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसानों को गेंदा, गुलाब इत्यादि फूलों की जो खेती है करते हैं उनको 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते हैं। साथ साथ ही जो इनपुट लगता है एजोटोबैक्टर, बायोफर्टिलाइजर, इसको भी हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई गेंदा या फूलों की खेती करके जो हमारी खेती है उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो फूलों की डिमांड है जो वर्ष भर बनी रहती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ही जो किसान भाई कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें प्लांट टू प्लांट दूरी ज़्यादा है, तो उसमें इंटरकल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने के बीच में जो जगह है उसमें इंटरकल्टीवेशन भी करके, एक तो सबसे बड़ी बात है गेंदा करने से क्या होता है, हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपए रेट है, तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृहत स्तर पर करेंगे, तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है। अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें, और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-68-35-90-89।
0: उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी।
1: वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गांव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के हवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है।
3: मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पर अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो दो तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो हमें इसमें 20,000 रुपए की लागत आई 2 एकड़ खेत में हमारे। उसके बाद 3 महीने में हमारी फसल तैयार हुई और उसमें हमें मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का। तब से हम साहब गेंदा कर रहे हैं।
1: मान सिंह बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सफल किसान हैं। इन्होंने 3 एकड़ खेत में गेंदे की फसल तैयार की जिसमें इन्हें 30,000 की लागत लगी। इन्होंने कड़ी मेहनत कर गेंदे की खेती में सफलता हासिल की है। गेंदे की फसल से लाभ होता देख अब मान सिंह परंपरागत खेती करना छोड़ केवल गेंदे की खेती ही करने लगे हैं। अपने खेत में प्राप्त उपज को बरेली के मंडी में जाकर अच्छे दामों पर उसे बेचते हैं। इनके अनुसार गेंदे की क्वालिटी के आधार पर बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है।
4: पहले गेहूं धान कर रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूं, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूं धान बोई 1000 रुपए 900 रुपए कुंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूं था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं, इससे ज्यादा गेहूं से ज्यादा मार्जिन, धान से ज्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्या जो है हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। एक एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में, मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग मान लो एक एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा, और 30 से 35 हजार की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी खाद पानी दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो इसकी है पीले वाले की ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज्यादा कर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मंदिर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है।
1: अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सह फसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
5: आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। 6 डिग्री के आसपास आपको रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10-12 दिन तक चल सकता है।
1: गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
5: जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसको इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं।
0: तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सह फसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है, और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यावसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे।
6: तो किसान भाइयों, हमने अपनी बात थाम ली, गल रसिया न फूल नी खेती नी वाती हो, एतरे गेंदा न फूल नी खेती नी वाती हो। इनो फूल नो हार बने से अने हार नी बाजार मा घनी मांग से। किसान भाइयों, आज ना समय मा आपु को समय पर अगर फूल नी माला लेवा जाई तो आपु समय पर माला नी मले, केम की इनी मांग घनी ज्यादा बढ़ी गई से। जगह जगह पर हाव फूल हार नो उपयोग था मंडी गयो से किसान भाइयों, अने आज ना तारीख मा इनी बाजार मा तो मांग से, अने बीजा बीजा क्षेत्रों मा पण इनी अलग अलग मांग रहे से। तो किसान भाइयों, आप ये जानियो कि गलरसियानी खेती तकनीकी तरीका देखी केवी रीते करी सकी अने केवी रीतने दवा पानी लागे, ये बड़ी बातें आज हमू तमारी बस माली ना आया। किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामली हाव आधुनिक तकनीकी देखी दूध डेरी नी व्यवसाय केवी रीते करी सकी अने इनामा आपड़ा किसान भाई केवी रीते अगाड़ी बढ़ी सके, ये बातें आपो हामली।
7: नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक अत्याधुनिक डेयरी फार्म में, जिसे स्थापित किया है एक बेहद ही होनहार युवा उद्यमी ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की है, उच्च शिक्षा हासिल की है, MBA किया है और साथ ही लंदन से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने चुना अपने करियर के लिए डेयरी फार्म को। ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को नहीं होगी जो ये जानते हैं कि आज की तारीख में डेयरी क्षेत्र भारत में एक उभरता हुआ क्षेत्र है। क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन वहीं यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। ऐसे में दूध और डेयरी उत्पादों के लिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में हमारे आज के युवा पशुपालक किस तरह से डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजना का लाभ लेते हुए आप भी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।
8: भारत के सीने में आज भी ग्रामीण संस्कृति धड़कती है और ग्रामीण संस्कृति के सीने में धड़कती है कृषि पशुपालन। खेती और पशुओं से इंसानों का नाता सदियों पुराना है, करीब 13,000 साल ईसा पूर्व का। यही वो दौर था जब जानवरों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। आज भी ये व्यवसाय खूब फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है। 20वीं पशुगणना बताती है कि भारत में अलग अलग जातियों के 85 करोड़ से भी अधिक पशु हैं। इनमें दुधारू गाय और भैंसों की संख्या 13 करोड़ 63 लाख से ऊपर है। अगर सिर्फ गायों की बात करें तो आंकड़ा 8 करोड़ 13 लाख है और यहाँ के 3.48% लोग पशु उत्पादन के काम में लगे हैं। 1951 के दौरान भारत में दूध उत्पादन करीब 1 करोड़ 70 लाख टन था, जो 2013-14 में करीब 14.25 करोड़ टन हो गया। आज हम सालाना 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इस उत्पादन में गायों का योगदान 52% है, बाकी 48% में 45% भैंसों का और 3% हिस्सा बकरियों का है। आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी वृद्धि दर 6% से भी अधिक है। यही वजह है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% तक चला गया है। ये आंकड़े हमारे देश को दूध के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा देते हैं। ज्यादा उत्पादन की वजह से ही हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। 1950-51 में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता महज 130 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 444 ग्राम हो गई है। इसका मतलब हुआ कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से भी ऊपर है। दूध हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आप शहरों में रह रहे हो या गांवों में, सफेद रंग के इस द्रव की जरूरत हर जगह है, हर किसी को है। यही जरूरत दूध उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं की नई उम्मीदें जगाती है और इन्हीं उम्मीदों को दूहने के लिए पशुपालकों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है। इस वर्ग में युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। जिनके पास संसाधनों की कमी है वो सामान्य तरीकों से काम चला रहे हैं और जिनके पास संसाधन है उनकी दिलचस्पी हाईटेक विधियों में है। अब यहाँ से एक सवाल जन्म लेता है कि आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई इंसान पशुपालन जैसे व्यवसाय को भला क्यों अपनाना चाहेगा। ऐसे ही सवालों को लेकर हम नोएडा के एक डेयरी फार्म जा पहुँचे। ये अत्याधुनिक फार्म लंदन से लौटे एक नौजवान दुष्यंत भाटी का है। वो MBA करने के लिए 7 समंदर पार गए थे। डेयरी फार्म का आइडिया वहीं से आया।
7: डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बहुत से युवा आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल डेयरी उद्यमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, दुष्यंत भाटी जी। आइए उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर जानते हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में जब हमने जाना तो बहुत ही खास बात ये हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी आप उच्च शिक्षा हासिल करके आए हैं, लंदन में आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद कैसे ख्याल आया कि डेयरी क्षेत्र से जुड़ा जाए और इसे एक उद्यम की तरह शुरू किया जाए।
9: जी मैम नमस्कार, आज हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया, एजुकेशन मेरी बेसिक जो प्राइमरी हुई है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इंडिया में अपने अंडर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी लंदन से MBA से। तो वहाँ पर मैंने जितना भी अपने जितने डेयरी फार्म्स थे, जो इस तरीके के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज थी, मैंने उनको स्टडी किया। उसके बाद मैंने देखा करके कि भाई अपने इंडिया में भी इस तरीके का एक लेवल हमें लाना चाहिए।
8: दुष्यंत ने लंदन में डेयरी फार्म की स्टडी जरूर की थी, लेकिन एक एमबीए छात्र के लिए ये नया क्षेत्र था। यही वजह है कि डेयरी फार्म को इन्होंने भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनाया, प्राथमिकता डेवलपर बनने की रखी, फिर इनका मन बदल गया और भविष्य की योजना वर्तमान बन गई। इन्होंने काम शुरू करने से पहले एनडीआरआई करनाल से प्रशिक्षण लिया, कुछ डेयरी कंपनियों के मैनेजरों के साथ वक्त बिताया और पंजाब के किसानों से मुलाकात की।
9: जितनी लैंड की अपनी स्कैर्सिटी आ रही है उसको देखते हुए कि भाई नंबर ऑफ जो लार्ज फार्म्स हैं उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और इससे हम लोग आगे जितने भी मिल्क एंड मिल प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करेंगे मार्केट में।
8: इस फार्म में फिलहाल 100 से भी अधिक गायें हैं। आज से 5 साल पहले इसे महज 6 गायों के साथ शुरू किया गया था। हष्ट पुष्ट शरीर और दूध से लबालब भरे थन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ काफी मेहनत की गई है और गायों का बहुत ख्याल रखा गया है।
7: अत्याधुनिक तकनीक से डेयरी फार्म स्थापित करने के बाद भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे में दुष्यंत भाटी जी किस तरह से अपने फार्म में पशुओं के स्वास्थ्य और उनके आहार का ध्यान रखते हैं?
8: यहाँ पर गाय पूरी तरह आजाद है। फार्म में ना तो आपको खूंटा नजर आएगा ना गायों के गले में रस्सी। इनका जब मन करेगा खाना खाएंगी, जब मन करेगा पानी पिएंगी। गाय सफाई को पसंद करती है, इसलिए फार्म में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो शावर और पंखे चल रहे हैं। अक्टूबर में इन्हें बंद करना होगा और सर्दियां आने पर गौशाला में पर्दे लटकाने होंगे। दुष्यंत का मानना है कि बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी चाहिए।
9: गले के टैग्स हैं जिससे हमें क्या मिलता है कि उनका डेटा हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि उनका मास्टिकेशन कितना है, मास्टिकेशन मींस जुगाली कितनी है और दूध कितना दिया उन्होंने, उनका टेम्परेचर लेवल क्या है, उनकी मूवमेंट कितनी हुई है, कितनी देर उन्होंने फूड का इंटेक किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो हमें कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं, जिससे कि हमें डेटा प्रोवाइड होता है कि हम देख सकें।

0: भाई गाय को कितना उसने पूरे दिन में अपनी मूवमेंट करी है, कितना हैबिट्स में खाना खाया है, और उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना हमें दूध उसने प्रोड्यूस करके दिया है। और उसी के साथ लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सारा, जिसमें कि गाय को बांधा नहीं जाता है और उसमें उसको खाना 24 घंटे के लिए दिया जाता है। दो बार हम लोग फीडिंग करते हैं, मिल्क अनलिमिटेड, वाटर अनलिमिटेड है।
1: हर गाय के आहार की गणना की जाती है, उसके खान पान का निर्धारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, वो किस स्टेज में है और दूध कितना दे रही है। हर 15वें दिन डाइट चार्ट बदल दिया जाता है।
2: आपसे मैं पशु के आहार के बारे में और विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस किस तरह का आहार आप उनको देते हैं और क्या उसमें भी मौसम के अनुसार तब्दीली करते हैं।
0: जो आहार बनता है पशु का वो चार चीजों से बनता है, जिसमें कि हम लोग हरा चारा लेते हैं, भूस लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड डाइट होती है, और साइलेज हम लोग प्राइमरी इन चार चीजों पे रखते हैं, बाकी एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह और होते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द काउ। तो उसके अंदर भी हम मेंटेन करते हैं कि भाई कितना साइलेज देना है, कितना भूस देना है, कितनी फीड देनी है, फीड की जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एज पर द मौसम चेंज करते रहते हैं।

0: और मक्का हम लोग बाहर से प्रिक्योर करते हैं, तो इस तरीके के इनके अलग अलग डाइट्स होती हैं जो हम मौसम के हिसाब से उससे फीड बनवाते हैं। कुछ बाहर की कंपनीज हैं उनसे भी ले लेते हैं, हम लोग अपना भी फीड प्लांट हमारा लगा हुआ है हम उसे भी बनाते हैं, और उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द काउ उसके साथ हम लोग जितने भी तरीके के 28 तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें फीड में डाल के उसको फीड को तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग इन गायों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो फीड डालते हैं, उसके साथ ही पूरा टीएमआर मेंटेन करते हैं। टीएमआर वो चीज़ है जो टोटल मिक्स राशन है जिसमें कि पूरा एक बैलेंस डाइट दी जाती है थ्रू आउट द ईयर एज पर द वेदर। उसमें ये जितना भी हमें कंसंट्रेशन डालना है, कितना हमें विटामिंस मिनरल्स उसका हम लोग ध्यान रखते हैं, जो अपनी देसी पदार्थ हैं जैसे हल्दी है शतावरी है वो भी हम समय समय पर डालते हैं, जैसे कोई गाय ग्याबन है उसके साथ हम लोग उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं वो इस तरीके के जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
1: दुष्यंत MBA है इसलिए वो खुद ही मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं और कांच की बोतलों में दूध पैक करके बेच रहे हैं। दूध के अलावा दही पनीर घी छाछ और मावा सब कुछ यहाँ बनता है।
2: इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हमें बताएं कि दूध तो है सबसे प्राथमिक जो प्रोडक्ट है उत्पाद है वो मिलता है हमें, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके?
0: दूध के साथ हम लोगों ने फिर पनीर बनाया, फिर घी बनाया और अब हम लोग स्वीट्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है लास्ट ईयर, और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क एंड घी पनीर बटर मिल्क छाछ ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं बाय नेक्स्ट ऑफ द मंथ।
1: शुरुआत से ही ये डेयरी फार्म अच्छा कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी के समय बिजनेस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था लेकिन अब फिर से पटरी पर लौट आया है। अच्छी कमाई की वजह से ही दुष्यंत दूसरे किसानों और नौजवानों को भी डेयरी फार्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 40 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं और उन्हें डेयरी फार्म विकसित करने के तरीके बता रहे हैं।
2: कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, आप बने रहें।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें आज हम आपके लिए डेयरी फार्म से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
1: दुष्यंत के पिता हरीशचंद भाटी अपने इलाके का जाना माना नाम है। खेती और पशुपालन इनका पुश्तैनी काम रहा है। उनका कहना है कि बेटे को बड़ा आदमी बनना था, इसलिए MBA के बाद नौकरी की बजाय खुद का कारोबार विकसित किया।
0: दुष्यंत भाटी जी की सफलता के बारे में क्या विचार है उनके पिताजी श्री हरीशचंद भाटी जी का, ये उन्हीं से जानते हैं, जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित

0: है तो हरिश्चंद्र जी, आप अपने क्षेत्र में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं और आपके सुपुत्र ने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, विदेश में पढ़कर आए हैं और उसके बाद उन्होंने डेयरी फार्मिंग को चुना। उनकी सफलता को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे कहावत है कि पूत के पैर पालने में पहचाने जाते हैं, तो ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है और इसकी जो एजुकेशन है वो पहले नोएडा में हुई और फिर अमेठी में हुई, फिर ये इंग्लैंड चला गया और इसने वहाँ जा कर के फिर अपने को एक्सपोज किया और फिर मार्केटिंग में और दूसरी क्षेत्रों में इसने बड़ी संभावनाएं संभाली। और जब ये वहाँ से लौटे, तो अब से 6 वर्ष पहले, तब हमने इसको ऑफर दिया था कि भाई आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो इसने मना किया और कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो हम लोग किसान लोग हैं गुर्जर जाति से, तो हमारे यहाँ बिजनेस में एक रिस्क होता है और वो लेने के लिए गांव के बच्चे तैयार नहीं होते। तो इसने कहा कि मुझे बिजनेस करना, तो मैंने कहा कि भाई उसमें आपको क्या संभावना लगती है और नौकरी आप प्रेफर नहीं कर रहे तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा कि नहीं, मैं इसलिए चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है भाई, बड़ा आदमी बनना है तो आप बड़ा आदमी बन जाइए। तो हमारी कुछ लैंड थी कासना में भी और जहाँ ये खड़े हैं यहाँ भी 60-70 बीघा ज़मीन है, तो हमने इनको कहा कि आप इसमें जो NCR के काम हैं बिल्डर्स लाइन वगैरह के, उसमें आप जाके देखिए। तो इसने स्टडी कराया तो इसका मन बिल्डिंग लाइन में, मकान बनाने में या फ्लैट बनाने में नहीं लगा। फिर ये नेचुरली जो हम लोगों के फोर फादर्स भी करते आए हैं, दूध का काम और इस तरह का काम जो है गाय का भैंस का, तो वो हम लोगों का पुश्तैनी काम था। तो फिर इसने एक उत्तर प्रदेश सरकार के की एक स्कीम थी काम धेनु, और उसमें 1 करोड़ 30 लाख लेके और 1 करोड़ बैंक से 30 करोड़ अपना लगा करके इनिशियली उसको छोटे से रूप में 6 साल पहले पूरा किया। लेकिन क्योंकि फिर इसका माइंड बहुत फर्टाइल था तो वो बहुत छोटी चीज़ हो गई। फिर इसने इसको ऑटोमेटिक प्लांट में कन्वर्ट किया और फिर इसने एक रिसर्च की डेनमार्क में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस कारोबार के बारे में, फिर पंजाब में स्टडी किया और फिर ये मुश्किल मिजाज से ही इसको लगा कि यहाँ काम करना चाहिए, तब इसने इसका काम शुरू कराया और फिर इसको ऑटोमेटिव बनाया। अब ये एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है और जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में बोटलिंग से अभी तक वो दूध देता है और इसने एक लाइसेंस भी वर्ल्ड लेवल का ले लिया है, जिससे इसका घी भी अब दुनिया में जाएगा।
2: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। एक उद्योग के रूप में ये 80 मिलियन यानी 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार देता है, जिनमें से ज्यादातर या तो छोटे और सीमांत किसान हैं या फिर भूमिहीन तबका।
0: डेयरी व्यवसाय का प्राथमिक उत्पाद दूध है, लेकिन इसके साथ ही और भी कई तरह के डेयरी उत्पाद हैं जिनकी बाजार में बहुत ही अच्छी मांग रहती है। तो आइए जानते हैं कि दूध और इसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में किस तरह के विकल्प और किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं।
2: दूध से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन उत्पादों को बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे आगे है। हमारा देश बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है, खासकर मक्खन, ऑयल, पाउडर के रूप में दूध और क्रीम, घी, लस्सी, पनीर, स्किम दूध पाउडर और पूर्ण दूध का निर्यात कई देशों में हो रहा है। 2022-23 के दौरान भारत से 67,573 टन डेयरी उत्पादों का निर्यात हुआ, जिनसे 2,27,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।
0: डेयरी व्यवसाय पारंपरिक तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तारीख में इसकी उपयोगिता और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।
2: राष्ट्रीय डेयरी योजना के विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के कारण डेयरी फार्मिंग का बुनियादी ढांचा काफी बेहतर हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत इस क्षेत्र को अच्छा प्रोत्साहन मिला है। सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। पशुपालन और डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है। पशुओं की उत्पादकता और रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन है। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से पशु आबादी के कानों में टैगिंग की जा रही है, ताकि पशुओं की बीमारियों का पता लगाने, निगरानी और नियंत्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।
0: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर विपिन, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजना है खास तौर पर जो चलाई जा रही है, जिसका जो पशुपालक है वो लाभ ले सकते हैं, जो डेयरी उद्यम से जुड़ना चाहते हैं।
3: धन्यवाद मैडम। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के सहयोग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ब्रीड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म जो लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारतीय ब्रीड्स हैं, भारतीय नस्लें जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनका संरक्षण किस तरह से हम कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 4,01,00,000 रुपया का है। इसके लिए आप ndddb.coop की साइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इसमें लगभग 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको 200 भारतीय नस्ल के पशु पालने होंगे, जिसमें कि प्रत्येक साल आपको ये मानते हुए कि 50% जानवर आपके गाभिन हो जाएंगे, तो उनसे हम अगर मोर्टेलिटी रेट निकाल भी दें तब भी 90 बछिया आपके पास मौजूद रहेंगी। उन 90 बछियाओं को आपको सेल आउट कर इसके फार्म को आगे बढ़ाना है। ये योजना की सब्सिडी आपको प्रत्येक 4 चरण में, जैसे जैसे आप काम कंप्लीट करते जाएंगे, उसी दशा में आपको 50-50 लाख रुपए की कर 4 बार में आपको योजना की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कर दी जाएगी।
2: बेहतर डेयरी कारोबार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहला है अच्छी नस्ल के सांड से गर्भाधान, दूसरा है आहार, तीसरा साफ सफाई, रोग प्रबंधन और टीकाकरण, और चौथा है पेट के कीड़ों की दवा दिलाना।
0: डॉक्टर विपिन, डेयरी उद्योग जो है इसमें भी कई तरह की नई तकनीकें अब आ गई है, खासतौर पर अगर नस्ल सुधार की बात करें या फिर उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में किस तरह की योजनाएं और हैं जिनका लाभ ले सकते हैं पशुपालक?
3: जो मेन तकनीक या अभी हमारे सामने जो निराश्रित गौवंश की समस्या आ रही है, उसके निदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसका लगातार हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी इसी कड़ी में हमारे पास वर्गीकृत वीर, जिसको कि सेक्स सॉर्टेड सीमन कहते हैं, उसके द्वारा हम अब पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की योजना का संचालन कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष की बात है कि इसकी अगर हम मार्केट कॉस्ट देखें तो लगभग 1,250 रुपये थी, लेकिन विगत वर्ष तक सरकारी लेवी इसकी जो थी वो 300 रुपया ली जा रही थी, लेकिन कृषक भाइयों को और पशुपालक भाइयों को सुविधा देने के लिए इस कृत्रिम गर्भाधान की शुल्क केवल 100 रुपये कर दी गई है। इसमें ये एश्योर्ड है कि आप जो भी जानवर कराएंगे उसमें 90% तक केवल फीमेल काफ ही बॉर्न होगा। जब फीमेल काफ बॉर्न होगा तो मेल काफ की जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा, क्योंकि मैकनाइज युग में ट्रैक्टर वगैरह का काम खत्म हो चुका है, इसलिए मेल काफ की उपयोगिता काफी कम हो चुकी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपके निकटस्थ जो भी पशु चिकित्सालय है उस पर आप जाकर वर्गीकृत वीर से अपने जो भी, अभी हमारे पास केवल गौवंशीय पशुओं का वर्गीकृत वीर उपलब्ध है, बहुत ही जल्दी महिष वंशियों का भी वर्गीकृत वीर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर आगे भी कार्य कर रही है कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक, जो कि अभी हमारे पास लैब में है, लैब टू लैंड तक आने में उसको थोड़ा सा समय है, लेकिन आगे हम उस तकनीक का भी प्रयोग फील्ड में करेंगे।
2: 70 के दशक में हमारा देश दूध की कमी से जूझ रहा था। प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता घटकर 107 ग्राम रह गई थी। तब देश में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया गया। इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। डेयरी क्षेत्र की जो सफलता आज हम देख रहे हैं उसमें इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भारत ही नहीं दुनिया भर में कोशिशें हो रही है। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत अलग से डॉक्टर कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाता है।
0: आज के कृषि के कार्यक्रम में कि किस तरह से आज के युवा डेयरी क्षेत्र से बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं।
4: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीवाड़ी। आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप वात हामली गेंदाना फूल नी खेती नी वात्यो अने कार्यक्रम नी बीजी कड़ी में आधुनिक तरीका देखी दूध उत्पादन नी वात्यो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायेला मुद्दा अने खेतीवाड़ी नी समस्याओ अने तीना समाधान नी वात्यो पण लावी से अने नवी नवी खेती नी तकनीकी वात्यो पण लावी से। किसान भाइयों, हम आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातें सांभळे अने आपड़ी खेतीवाड़ी ना क्षेत्र में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू बस एतरी वात, केम कि हाल समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कही था, हामलता रहेजो झाबवानी आवाज पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM पर तमारा आज रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
6: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा आपके तरानों की हमसफर और आप सुन रहे हैं SN रेडियो का एक बेहद प्यारा प्रोग्राम जिंदगी के रंग पेट्स के संग। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी पेट पेरेंट से जिनके घर में सिर्फ 4 डॉग्स नहीं रहते बल्कि 4 अलग अलग पर्सनालिटीज रहती हैं, 4 अलग कहानियां और ढेर सारा प्यार रहता है। हमारे साथ हैं अनुष्का जी जिनके परिवार का हिस्सा है साशा, शीरो, सूजी एंड मार्शमेलो। साशा अपनी जेंटल गोल्डन रिट्रीवर पर्सनालिटी के लिए जानी जाती है। शीरो एक ब्रेव लिटिल प्रिंसेस जिन्होंने उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी जंग जीती। सूजी घर की इंटेलिजेंट और नॉटी लीडर है और मार्शमेलो एक फॉस्टर पपी से हमेशा के लिए घर का फैमिली मेंबर बन गया। सबसे खूबसूरत बात ये है दोस्तों कि इनके घर में ये चारों फर बेबी सिर्फ प्यार ही नहीं बांटते बल्कि नए फॉस्टर पपीज को भी ट्रस्ट और फैमिली का मतलब सिखाते हैं। तो आइए अनुष्का जी से ही सुनते हैं उनके प्यारे 4-लेगेड परिवार की ये दिल छू लेने वाली कहानी। तो अनुष्का जी, आपका हमारे खास सेगमेंट जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप SN रेडियो पे आके?
7: काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज मेरी जिंदगी में, इट इज स्पेशल फील हो रहा है टू बी ऑनेस्ट।
6: जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं मैम। मैंने आपसे बहुत पहले बहुत एक्सटेंसिवली बात की थी आपके पेट्स के बारे में और मैं इतनी एक्साइटेड थी, इतनी लुक फॉरवर्ड कर रही थी हमारे इंटरव्यू के लिए। हाउएवर टाइम हैज इट्स ओन वेज, तो कोई बात नहीं, हम बड़े टाइम बाद कनेक्ट हुए, बट हम कनेक्ट हुए उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर स्पेयरिंग ऑल द टाइम। एंड इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा एपिसोड और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले आपके चारों पेट्स के बारे में हमें बताएं, उनका नाम आपने कैसे रखा, किस तरह से वो आपके जीवन में आए, इसके बारे में कुछ जानकारी हम सभी के साथ साझा करिए।
7: तो मेरे पास 4 पेट्स हैं, 4 डॉग्स हैं और द ओल्डेस्ट में इज साशा। साशा एक गोल्डन रिट्रीवर है एंड शी 6.5 years old। तो वो बहुत ही जॉली है, बहुत ही प्यारी है, काफी मतलब काफी काफी प्रिटी काफी लाइक लाइकेबल बच्ची है. आज तक मैं किसी से नहीं मिली जिस सास पे मिलके जिसे अच्छा नहीं लगा हो. एंड माई सेकेंड बेबी इज शीरो. शीरो है कुछ 18 किलो का, बट उसका ईगो है कुछ 1800 किलो का.
8: वेरी नाइसली पुट. यस, अल्फा अल्फा डॉग है.
7: नो, ही इज एक्चुअली नॉट अल्फा. आई विल कम टू माय अल्फा, बट ही इज ही नीड्स अ स्पेस. तो उसको काफी अपना स्पेस पसंद है, उसको अपना एरिया पसंद है. उसको उसको नहीं पसंद हमेशा सबके आसपास घूमना. उसको सिर्फ अपने मम्मी से प्यार है और मम्मी अलाउड है, बाकी कोई अलाउड नहीं है. और कोई इंसान भी अलाउड नहीं है, कोई दूसरा कुत्ता भी अलाउड नहीं है. और उसके स्पेस में अगर आप उससे बिना पूछे चले जाओ तो वो इतना एक गंदे लुक्स देता है कि ऐसे कैसे आ सकते हो तुम. मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो, तुम ऐसे कैसे आ गए मेरे जगह पे.
8: ऑसम ऑसम.
7: एंड माय थर्ड बेबी इज सूजी. सूजी एक टॉर्नेडो है. वो है हमारी अल्फा. और वो सबसे छोटी है साइज में, पर उसका प्रेजेंस बहुत बड़ा है. बहुत ही ज्यादा बड़ा. उसका प्रेजेंस सबको फील होता है क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक है और अल्ट्रा लेवल पे, मतलब एनर्जेटिक अल्ट्रा लेवल पे क्योटिक बच्ची है. बट उसमें बहुत ब्रिलियंट, लाइक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ब्रिलियंट. उसको बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं. तो शी कैन डू समवेयर अराउंड 45 ट्रिक्स. या एंड वो बहुत ही स्मार्ट लड़की है.
8: अमेजिंग.
7: एंड आवर फोर्थ बेबी इज मार्शमेलो. मार्शमेलो वाज इज आवर यंगेस्ट. और वो बहुत प्यारा है, बहुत एडोरेबल है, और वो बहुत क्लिंगी है. वो हमेशा बाजू में रहेगा. वो एक ऐसे इतनी उम्र की तरह मेरे साथ चिपका रहेगा. तो बहुत प्यारा है और वो हमेशा अपना पूछ हिलाता रहता है. वो कभी भी उसको मैंने सैड देखा ही नहीं है 5 मिनट के लिए. वो अगर 1 सेकंड के लिए सैड हो जाए तो भी नेक्स्ट सेकंड वो खुश हो जाता है. तो बहुत प्यारा है,
8: अडोरेबल. और इन सबके साथ जो आपने एडजेक्टिव शेयर किए वो इतने क्यूट हैं, इतने यूनिक हैं, दिस होल पर्सपेक्टिव कि जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे मेरे दिमाग में उन सबका एक जोडियक साइन आता जा रहा था. एक मिस कंजीनियलिटी है, एक मिस्टर अल्फा है, बिल्कुल लियो जैसा. एक लियो मेल है, एक लियो फीमेल है, एक शायद पाइसिस है, द मार्शमेलो हु इज एज क्यूट एज द मार्शमेलो इटसेल्फ. एंड अमेजिंग मैम, अमेजिंग. बहुत ही क्यूटली आपने एक्सप्लेन किया. अब ये भी बता दीजिए फटाफट कि आपने कैसे डिसाइड किया इन सबको अपने जीवन में लाना, वो क्या जर्नी थी आपकी?
7: ऑनेस्टली मुझे बचपन से ही डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद थे, बट लाइक ग्रोइंग अप ये कभी हो नहीं पाया. बट जब मेरा मतलब घर सेट हो गया, पर्सनल लाइफ सेट हो गई, करियर सेट हो गया, तब मैंने और मेरे पार्टनर ने साथ में सोचा कि मे बी अभी हम लोग रेडी है. तो मेरे हस्बैंड के रूममेट के पास, मैं लाइक देन बॉयफ्रेंड नाउ हस्बैंड, तो तभी हिज रूममेट हैड साशा एंड ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस दे वर नॉट गोना बी एबल टू कीप हर. तो फिर उन्होंने मतलब वो ऐसे सोच रहे थे कि किसके साथ देना है. तो मी एंड विकास वर लाइक हम तो रख लेते हैं, हम इतने टाइम से जानते थे हम ही रख लेते हैं. एंड देन वी दैट इज हाउ लाइक साशा केम इन आर लाइफ. एंड एक के बाद एक देन द नेक्स्ट वन. उसका ऑब्वियसली अकेले तो नहीं रख सकते, शी नीड्स कंपनी राइट. तो हम लोगों ने सेकंड वाला लाया, फिर थर्ड वाले. मेरे हस्बैंड को एक और लड़की चाहिए थी, थर्ड लेके आए. मार्शमेलो की स्टोरी थोड़ी सी अलग है क्योंकि वी नेवर प्लान्ड टू हैव हिम. वी फॉस्टर्ड में हम लोगों ने लास्ट कुछ सालों में वी हैड लाइक सम 18-20 फॉस्टर सो फार. और हर बार हम लोग फॉस्टर करते हैं तो उनको अच्छे होम्स मिल ही जाते हैं. इट इज वेरी सैटिस्फाइंग टू हैव टू सी मतलब कहाँ से दे स्टार्ट एंड हाउ हैप्पी दे आर. बट वॉट हैपन्ड विद मार्शमेलो इज ही गॉट रिटर्न्ड लाइक ट्वाइस एंड ड्यू टू नो रीजन, लाइक नो एक्चुअल रीजन, लाइक एकदम रैंडम रीजन की वजह से उसको रिटर्न करते गए. एंड आफ्टर अ पॉइंट वी फेल्ट लाइक नो, दिस इज मेंट टू बी. हम लोग हमारे पास ही रहेगा ये. तो तो इट्स लाइक एक डिसीजन तो नहीं था, ये चार डिफरेंट मोमेंट्स थे जब हम लाइक एक के बाद एक प्यार में पड़ते गए.
8: वाओ, सच अ ब्यूटीफुल वे टू पुट इट, हम प्यार में पड़ते गए, क्या बात है मैम, मजा आ गया. और जैसे आपने बताया कि मार्शमेलो बिल्कुल अनप्लान्ड बेबी था, तो आई थिंक जो अनप्लान्ड होता है वो सबसे अडोरेबल ही होता है, घर का सबसे प्यारा ही होता है,
7: सबसे लाडला होता है.
8: सबसे लाडला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और ये सबकी शायद आप बीती है कि पूरा बचपन, पूरी आई थिंक कॉलेज डेज ऐसे ही निकलते हैं भीख मांगते हुए कि मुझे

0: पेट लाना है, पेट लाना है, बट पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते. मेरी भी यही आप बीती है, बट आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दैट. आई एम 34 एंड काउंटिंग, सो लेट्स होप 44 तक तो आई हैव एटलीस्ट वन पेट. फिंगर्स क्रॉस्ड. बिल्कुल मैम, इन्हीं बातों के बीच हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ. जब आप अपने पेट को, अपने फर्स्ट पेट को टू बी स्पेसिफिक, अपने जीवन में लाए, तो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होंगी, आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे. तो किस तरह के चेंजेस आपको आपके जीवन में करने पड़े, लाइफस्टाइल में करने पड़े, जीवन शैली में करने पड़े, और इन सबके साथ कुछ कुछ बहुत ऐसे मोमेंट्स जो अनफॉरगेटेबल हैं आपके लिए, जो शायद रोजमर्रा में होते हैं बट वो इतने अडोरेबल होते हैं कि आप दे मेक योर डे, अगर उनको आप शेयर करना चाहें तो.
1: आई मीन ऐसे एज इन चेंजेस के हिसाब से मैं बात करूं तो अनकंडीशनल लव जो एक डॉग आपको देता है वो आई थिंक इट्स अनइमेजिनेबल अंटिल एंड अनलेस आप एक्चुअली एक डॉग रखो. वो समझना बहुत मुश्किल है किसी इंसान के लिए बिना ये फील किए. तो दैट इज द नंबर वन थिंग दैट आई वुड से. मैं उससे पहले इस लेवल पे इस तरीके का अनकंडीशनल प्यार कभी नहीं फील किया. और ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था मेरे लिए कि साशा लाइक कम्प्लीटली डिपेंडेंट, कभी भी मैं उसको छोड़ के जाऊँ, 5 मिनट के अंदर वापस आऊ तो भी शी सो हैप्पी टू सी मी. ऑल दोस थिंग्स लाइक दे जस्ट फिल योर हार्ट विथ हैप्पीनेस.
0: एब्सोल्युटली,
1: दैट इज लाइक बहुत ही महती, बहुत ही मतलब प्यारा एक्सपीरियंस है और हर इंसान को मिलना चाहिए एक्सपीरियंस.
0: ट्रूली ट्रूली ट्रूली. और कुछ मोमेंट्स जी.
1: या एग्जैक्टली. सो आई वुड से लेट मी शेयर मेरा सबसे क्यूटेस्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट. आई गेस ये उस दिन की बात है जब हम लोग पहली बार सूजी से लाइक हम लोग बेसिकली सूजी को अडॉप्ट करने वाले थे. हमें नहीं पता था सूजी को अडॉप्ट करने वाले हैं, बट हमारे थर्ड बेबी को अडॉप्ट करने वाले थे. तो हम लोगों ने एक एनजीओ से कॉन्टेक्ट किया कि आपके पास जो भी रेडीली अवेलेबल पपीज है वो आप हमें बताइए. तो उन लोगों के पास दो पपीज थे. एक बहुत ही क्यूट सा, पूरा वाइट, एकदम अडोरेबल सा, काम सा, 1.5 महीने का बॉय, बेबी बॉय. और एक एक्सट्रीमली नॉटी ब्लैक कलर की 3 मंथ्स ओल्ड गर्ल. एंड ये दो पपीज थे उनके पास. तो दे ब्रॉट द पहले तो वो अपना वो बेबी बॉय हमारे गोद में रखा उन्होंने. एंड दैट बॉय वॉज अडोरेबल. ही वॉज सो स्वीट, सो जेंटल. वो एकदम घुल मिल गया हमारे साथ, एकदम सो गया वो हमारी गोद में बैठते ही साथ साथ. और बहुत ही प्यारा था. और उसके बाद उन्होंने एज अ आफ्टर थॉट उन्होंने ना ऐसे गेट खोला और ये तूफान अंदर आई.
0: जंगली तूफान टायर पंचर जी.
1: जंगली तूफान अंदर आई एकदम. और उसने ना एकदम आते ही साथ साथ पूरा कियोस मचा दिया. उसे इधर उधर भागना, अपना टेरिटरी मार्क करना. हमारे दो डॉग्स थे, उन दोनों को काट लिया. उनको हग कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, सब पे भौंक रही है. जाके कोई तो ऐसा पेड़ था उसको च्यू कर रही है, कुछ भी एकदम टॉर्नेडो. और ये इतना एनर्जी उसमें इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर. एंड मैंने मतलब जैसे हमने देखा उसको ये सब करते हुए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने लाइक एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा. एंड वी लाइक यही है, यही चाहिए मुझे अपने जिंदगी. ये एनर्जी चाहिए,
0: ये एनर्जी चाहिए. यस, दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन आवर लाइव्स. यस
1: एग्जैक्टली, केओस चाहिए.
0: क्या बात है. बहुत सारे लोग अदरवाइज डिसाइड करते, दे वुड हैव गॉन फॉर द क्यूटर, द मोर अडोरेबल, द मोर यू नो घुल मिलने वाला बच्चा. बट देन यू गाइज, आई एम श्योर यू वांटेड दैट क्योर्स एंड अमेजिंग दैट ही फाउंड अ वे एंड ही फाउंड अ प्लेस, शी फाउंड अ प्लेस इन योर लाइफ. यस, थ्रू दिस अमेजिंग जर्नी. एंड थैंक यू सो मच इसको साझा करने के लिए. आई एम श्योर आपकी भी मेमोरी रिफ्रेश हुई होगी, आपको भी वो दिन याद आया होगा. आपकी आवाज में वो खनक है तो मैं फील कर पा रही हूँ मैम. चलिए जी, इन्हीं बातों के बीच हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, जो आप ही की फरमाइश पे है, कांट हेल्प फॉलिंग इन लव बाय कीना ग्रानिस.

0: वेलकम बैक अनुष्का मैम. आगे चलते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप पेट्स को घर में लाते हैं, बिकॉज आपके पास 4 पेट्स हैं, तो आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है और आपने बहुत सारे लोगों को भी आसपास अपने देखा होगा जिनके घर में बच्चे भी हैं और पेट्स भी को एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके नजरिए से क्या एक क्वालिटी होती है जो किसी पेट के घर में आने से आपके बच्चों में डेवलप होती है, क्वालिटी या क्वालिटीज, और किस तरह से वो बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके बच्चों के लिए? और इसी के साथ एक और मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई पेट घर में होता है तो क्या उससे घर की एनर्जीज चेंज होती हैं? आप अगर कभी लो फील कर रहे होते हो तो क्या आपका पेट जेन्युइनली आपको चीयर अप कर सकता है? क्या वो एक गेम चेंजर होता है पेट को घर में रखना?
1: डेफिनेटली. एक्चुअली लाइक सबसे पूरे घर का एनर्जी डिपेंड्स ऑन द लिविंग बींग्स जो आपके घर में रहते हैं. और पेट्स आर, वो होते छोटे से हैं पर उनका प्रेजेंस बहुत बड़ा होता है आपकी लाइफ में. और वो जो प्रेजेंस है ना, वो पूरे आपके घर का एनर्जी एब्सोल्युटली लाइक ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है. आप अगर दो इंसान एक घर में रह रहे हैं, उसका एनर्जी बहुत अलग होता है. उस इंसान के साथ उसके पेट्स, उसके बच्चे, सब हो उसके, उससे आप कंपेयर करो तो. क्योंकि कितना ही आप अपने में मस्ती कर लोगे ना, पेट्स जिस लेवल पे खुशियां लाते हैं, जिस लेवल पे मस्ती करते हैं, जिस लेवल पे, वो आपको कभी सैड होने ही नहीं देते ना. वो इतना केओस ला दे, इतना ही प्यारी प्यारी हरकतें लाते हैं वो. इतने मैंने कभी ऐसा मतलब फील ही नहीं किया कि मैं सैड हो सकती हूँ. 5 मिनट से ज्यादा अगर मैं सैड होती हूँ तो उसके बाद सूजी आके मेरा पूरा मुंह चाट देगी. वो आके कुछ तो करेगी, वो अपना हग्स इनिशिएट करेगी, वो आके कडल करने लगेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी जब तक मैं हंस ना दू. एंड सेम थिंग फॉर लाइक ह्यूमन बेबीज, राइट? ह्यूमन पेट्स अपने कितने इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लाइफ में, कितनी सारी चीजें सिखाते हैं वो. वो उनको मतलब लिविंग बींग्स के, दूसरे लिविंग बींग्स की नीड्स को समझना और उनको एंटिसिपेट करना, कंपैशन सीखना, कंपेनियनशिप सीखना, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए. और स्पेशली यू नो आज के जमाने में तो ये चीज और भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ पेट्स रखो. क्योंकि आज हम लोगों के सबके घर पे एक से ज्यादा 2 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं है. और कितनी कम इंटरेक्शंस होती है किसी भी बच्चों के दूसरे घरों से ना. तो आप अगर पेट्स भी नहीं रखोगे तो आपके बच्चों के इंटरेक्शंस बहुत कम हो रहे हैं किसी भी इंसान से भी, किसी भी पेट से भी. और पेट के साथ इंटरेक्शन इज सो मच मोर सेफर क्योंकि वो जजमेंटल नहीं होते, वो हमेशा एक स्टेडी कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्राइसलेस अनकंडीशनल लव फील करना एट अ वेरी अर्ली एज, वो बहुत बहुत सारा लाइक पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं बच्चे की जिंदगी में.
0: वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू एंड वेरी नुएंस्डली आंसर्ड. कि सच में बहुत सारी क्वालिटीज जो आज लुप्त होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेक्शन, वो बच्चे सीख सकते हैं पेट्स के अराउंड और बहुत स्टेडिली सीख सकते हैं क्योंकि नेचुरली दे आर सेफ और लाइक यू सेड एंड दे आर अनकंडीशनली लविंग एंड स्टेडी कंपेनियंस. तो बहुत अच्छा आंसर आपने दिया.
1: स्पेशली लाइक आप अगर इंडियंस की तरफ देखो, लाइक इंडियन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, दे आर वेरी सेफ, दे आर कॉल्ड लाइक नैनी डॉग्स. तो वो हाँ, ये आप कभी भी मतलब दे वुड नॉट एक्चुअली लाइक, अगर आप इंडियंस को घर पे लाके आप उनको बड़े करते हो ना, तो ये वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं डॉग्स के लिए. अब सारे ब्रीड्स मे बी नॉट द बेस्ट फिट for dogs, for kids, but Indies definitely Indian breeds are very, very, like, they love your kids more than you love them.
0: Right. तो आपके पास 3 इंडीज हैं और 1 कॉकर स्पैनियल है, इफ आई एम करेक्ट?
1: गोल्डन रिट्रीवर, एक गोल्डन और 3 इंडीज, यस.
0: वाओ मैम, अमेजिंग. अब इसी से मैं थोड़े से सीरियस क्वेश्चन की तरफ चलूं अगर, तो क्योंकि आप फॉस्टर होम्स में इतना एसोसिएटेड हैं, आपकी लाइफ इतनी क्लोजली रिलेटेड और एसोसिएटेड है, इतना काम आप करते हैं, इतने फॉस्टर्स आपने अडॉप्ट करे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें, कि आजकल बहुत सारे लोग पेट्स तो ले आते हैं बट दे डोंट नो कि पेट लाने के क्या एक इम्पोर्टेंट केयर है, क्या एक ऐसी चीजें हैं जो उनको करनी पड़ेंगी जो नॉन नेगोशिएबल है, और वो पेट केयर के लिए मतलब इतना कोर है कि अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं तो शायद यू शुड नॉट गेट अ पेट। तो ऐसी क्या बातें अगर आप कुछ हमें पॉइंट आउट कर सकें।
1: मैं एक बहुत ऑनेस्टली मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अब आप अगर एक पेट पेरेंट बनना चाहते हो तो आपको वो नाम बहुत केयरफुली देखना चाहिए। वो आपको बोलते हैं पेट पेरेंट, तो आप पेरेंट हो और वो एज अ बेबी आपको उसको देखना है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। तो ये एक जर्नी है, ये एक एक एक सेकेंड की मोहमाया नहीं है, एक सेकेंड का बस हमेशा खुशियां ही मिलेगी ऐसा ऐसा नहीं होता है। आप जब एक पेरेंट होते हो तो आप अपने बच्चे के साथ होते हो उसके अच्छे बुरे दोनों वक्त में। तो जब आप एक पेट पेरेंट होते हो तो ये हमेशा आप स्टेडीली अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जब उनकी तबीयत खराब होगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब उनको अटेंशन चाहिए तो चाहिए, काफी चीजें उनकी नीड्स है वो आपको फुलफिल एज अ पेरेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये एक पेरेंट बनने के लिए जो आप डिसीजन लेते हो वो आप हल्के में तो नहीं लेते हो, तो ये भी डिसीजन आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप सोचो कि आप रेडी हो, आप स्टडी हो इस इतने बड़े डिसीजन को, इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, तो ही आप लो, वरना डोंट डोंट रूइन अनदर लिविंग बींग्स लाइफ। राइट,
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल
1: आप
0: सही
1: एक
0: कहा
1: ने तो
0: आपने।
1: फिर या लाइक सी इफ यू वांट कि आप जब थोड़ा सा पुछू पुछू करने के लिए आप एक डॉग रख लिए और फिर बाकी का टाइम आप बांध के रख रहे हो या कहीं पे उसको एक जगह पे कन्फाइनमेंट में रख रहे हो, आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आप स्टफ टॉय रख लो। आप एक लिविंग ब्रीदिंग बींग के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर आंसर मैम, और बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया कि ये पेरेंटहुड की जर्नी है, दिस इज एक्चुअली अ पेरेंटहुड जर्नी विच इज आई थिंक इससे बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम एक बच्चा अपने जीवन में लाते हैं तो भी हम बहुत सोचते हैं और तभी हमें डिसाइड करके रखना, मतलब एक बच्चे को जीवन में लाते हैं, आई थिंक वो जितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है उतना ही इम्पोर्टेंट डिसीजन एक पेट को लाना है। फॉर एटलीस्ट 15 और 14 ईयर्स ऑफ योर लाइफ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी इन योर हाउस एंड यू नीड टू टेक केयर। तो अगर ये नहीं कर सकते, स्टेडिली नहीं कर सकते, तो मत लाइए। प्लीज मेरे श्रोताओं से फिर से हम री इन्फोर्स कर रहे हैं इस पॉइंट को कि जैसे मैम ने कहा कि आप स्टफ टॉय रख लीजिए, अगर आप रेडी नहीं है, आपको सिर्फ कूची पूची करना है, तो आप फॉस्टर होम्स में जाके उनसे मिलाइए, पेट केयर्स में जाके उनसे मिलाइए एंड यू स्पेंड। और आजकल तो आज आई थिंक ऐसे पार्लर्स भी है जाके जहां पे यू गो स्पेंड सम टाइम विद अ पेट एंड कम बैक। बट हैविंग सेड दैट, डोंट गेट अ पेट होम इफ यू आर नॉट रेडी। तो इन्हीं रिस्पॉन्सिबल बातों के बीच हम सुनेंगे एक और खूबसूरत गीत। सारे गीत की फरमाइश आपने जो की है वो इतने खूबसूरती से क्राफ्टेड है अराउंड दिस एपिसोड, अराउंड पेट केयर, अराउंड योर पेट लव। तो बहुत ही मजा आ रहा है मुझे आपके सॉन्ग्स की फरमाइश सुन के भी। अब सुनते हैं मेरा मन और यही हूं मैं का एक बहुत ही खूबसूरत सा मिक्सअप आयुष्मान खुराना की आवाज में।

0: अब हमने ये बहुत नुएंस्ड तरीके से डिस्कस कर लिया कि पेट पेरेंट्स बनने के लिए आपको किस तरह से रेडी होना चाहिए, बट अगर मैं आपके जीवन से पूछूं कोई एक या दो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में जो आपके लिए भी आई ओपनर थे कि अच्छा मेरी लाइफ ऐसे भी चेंज हो सकती थी बिकॉज ऑफ माई फोर पेट्स, अगर कोई ऐसा इंस्टेंस आपके जहन में अभी आ रहा है जो आप साझा करना चाहें। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी ये सवाल कि एनिमल्स के लिए आप पेट पेरेंट नहीं हैं, वेरी गुड, इट्स योर चॉइस, फ्री कंट्री है, डेमोक्रेसी है, बट एनिमल्स की तरफ आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस पर अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो अपने एक्सपीरियंस से।
1: तो आई विल आंसर देम वन बाय वन।
0: जी
1: अगर आप मतलब मुझसे पूछे कि मैंने क्या सीखा है अपने पेट से, तो बहुत ही ज्यादा चीजें मैंने अपने पेट से आज तक सीखी है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं इतनी सारी चीजें सीखूंगी। और बहुत फनी है कि इतने छोटे छोटे क्रीचर्स है, इतने छोटे छोटे लिविंग बींग्स है, बट उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में इतना बड़ा होता है कि आप कभी कभी आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि इतनी सारी चीजें सिखा देते हैं वो आपको लाइफ में। मेरा एक बहुत लाइक ऑन अ लाइटर साइड, मेरा एक न्यू स्किल मैंने डेवलप किया है, वो है कि एक ही स्कूप पे बहुत सारा पूप कैसे उठा सकती हूँ।
0: वाओ, बस ऐसी ही चीजें जाननी थी मुझे आपसे, दिस इज वेयर आई वांटेड टू गेट यू। जी बताए, वेरी इंटरेस्टिंग।
1: लाइक आई मीन दिस इज ऑल्सो लाइफ स्किल, राइट? आवाज सुन के बता सकती हूँ कि मैं कब किसी को भी उल्टी आ रही है।
0: माय माय, हाउ इज दैट?
1: दे स्टार्ट हीविंग, मतलब वो बहुत ज्यादा हीविंग करने लगता है तो मुझे एकदम से समझ में आता है ओ ये इसको आ रही उल्टी।
0: एंड द कॉन्सेप्ट इज वन स्कूप वन पूप।
1: No, now I can do somewhere around 3 poops in one scoop.
0: Oh my.
1: That's flex. और मेरे हस्बैंड को तो इसमें ज्यादा

0: आता है, मैं तो फिर भी कम उठाती एक बार में।
1: क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग जी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जी।
0: बट अगर अभी अपन एनिमल बिहेवियर की बात करें तो मुझे एक्चुअली इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स है और मेरे हिसाब से इंसानों को अपने आसपास सराउंडिंग एनिमल्स के प्रति बहुत लाइक यू नो कंसिडरेट, एटलीस्ट कंसिडरेट होना जरूरी है क्योंकि आप एक चीज आप ये भी समझो कि आप कंसिडरेट हो या ना हो, आपको देख के आपके बच्चे सीख रहे हैं और वो हमारे जिंदगी के लाइक दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री राइट। तो आप अपने बच्चों को जैसे सिखाते हो, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हो ना अपने बच्चों को कि वो किसी के साथ बुरा ना करे, वो अच्छे इंसान बने बड़े होके, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इज वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए अच्छे इंसान ना बने, वो इस दुनिया में हर एक जानवर, हर एक लिविंग बींग, हर एक क्रीचर, हर एक छोटी सी चीज के प्रति भी कंपैशन रखे और ऐसे बड़े हो कि उनको समझ में आए कि वो हर एक चीज दे डिजर्व टू लिव। हमने जो ये जमीन खरीदा है या हम इस घर में रहते हैं, हमने ये बाकी के क्रीचर से खरीद नहीं लिया है, हमने सिर्फ दूसरे लोगों से खरीदा है कि दूसरे इंसान नहीं एंटर कर सकते इस जगह पे, बट बाकी के क्रीचर्स उतने ही हकदार है इस जमीन में रहने के जितने कि आप हो। तो आपको कंपैशन हमेशा रखना चाहिए। लाइक एक बहुत बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारे सोसाइटी में आज के जमाने में मुझे हर जगह से सुनाई आती है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि आपको रात में जब मैं सो रहा था, मैं सो रही थी तब मुझे बाहर से भौंकने की आवाज आ रही थी तो मेरी थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब हो गई, तो आप सारे कुत्तों को हटवा दो यहाँ से, मुझे अपने सोसाइटी में कुत्ते नहीं चाहिए। बहुत बहुत फनी है ये सोचना कि भाई आप अपने अच्छे से घर के, अच्छे से बेडरूम के, अच्छे से एयर कंडीशनर बेड पे सोते हुए आप ये कह दो कि जाओ ये गली के कुत्ते जो बेचारे शायद भूखे हो, जिन्हें दिनों से खाना ना खाया हो, वो बारिश में भीग रहे हो, उनको हटा दो यहाँ से, वो सालों साल से शायद आपके यहाँ रहने से पहले से वो यहाँ रहते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनको बस हटा दो क्योंकि आपको आवाज अच्छी नहीं लगी उनकी। और क्या क्या होता है जब आप इनको ऐसे डिस्प्लेस कर देते हो, आपको ये रियलिटी पता होनी जरूरी है। आप जब एक डॉग को डिस्प्लेस करते हो, मोस्ट ऑफ दीज डिस्प्लेस डॉग्स डू नॉट सर्वाइव एनीवेयर एल्स, तो क्या आप सच में इतने हार्श हो सकते हो कि आपको आवाज अच्छी नहीं लगी? तो आपने एक डॉग को, और एक भी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर मल्टीपल डॉग्स जिनको आपने डेथ सेंटेंस दे दिया जस्ट बिकॉज आपको आवाज अच्छी नहीं लगी। आप इतने बड़े तो हो नहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल, माइटियर देन
0: थाउ, ह्यूमिलिटी रहना चाहिए।
1: ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। बहुत ही बहुत जरूरी पॉइंट आपने रेज किया, ये हम एज अ ह्यूमन रेस इतने सेल्फिश हो गए हैं, इतने विम्सिकल हो गए हैं और माइटियर देन दाओ समझते हैं खुद को, कि लाइक यू सेड कि एक आवाज पे हम ये डिक्लेयर करने को रेडी हैं कि इनको डिस्प्लेस कर दो, मेरे को मेरी नींद बहुत प्यारी है और अच्छी है और उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हम कितने सेल्फ सेंटर्ड हैं और हम कितना दूर जाते जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से ऑफ को एग्जिस्टेंस। एक तरफ तो हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी, और दूसरी तरफ हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। खैर मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगी, आगे चलते हैं मैम। अब अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपके जीवन में अगर आपके पेट से कोई भी तीन ऐसे लेसन्स आपको मिले जो आप किसी ह्यूमन से कभी नहीं सीख सकते थे, लाइक क्वालिटी वाइज, इमोशनली, इफ यू कैन शेयर दोस थ्री लेसन्स विद अस।
0: आई फील लाइक किसी भी इंसान को या किसी भी लिविंग बीइंग को कम्प्लीटली सेल्फलेसली अनकंडीशनली प्यार करना, उसके बारे में सोचना, दैट कंपैशन इज समथिंग आई डिडेंट अंडरस्टैंड बिफोर आई हैड माय पेट्स। उसके पहले आई यूज टू बिलीव कि मैं मतलब किसी से अच्छे से प्यार करती हूँ तो इसका मतलब यही है कि हाँ ठीक है मैं उसके बारे में सोचती हूँ, बट एकदम इतना अनकंडीशनली किसी से प्यार कर रहा कि भाई कुछ कुछ लेना देना नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, इतना ही. ये चीज मैंने डेफिनेटली अपने डॉग्स से सीखी है. फिर इजीली फॉरगिव करना. मैंने अगर कुछ डांट दिया अपने डॉग्स को, 5 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं और वो फिर से मुझे उतने ही प्यार से मेरे पास आते, उतने ही कंपैशन के से मेरे पास आते हैं जितना 5 मिनट पहले थे. और ये चीज किसी को फॉरगिव करना है कम्प्लीटली, कि आप उस पूरे इंसिडेंट को ही भुला दो.
1: बिल्कुल.
0: ये चीज मैंने डेफिनेटली सीखा है. मैं पूरी तरीके से नहीं सीख पाई हूँ, बट ये मैं सीख रही हूँ, आज भी सीख रही हूँ इसे.
1: वाओ.
0: आई थिंक द थर्ड थिंग लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है मैंने. इससे पहले मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, बट माई सेकेंड बेबी शीरो हैज अ लॉट ऑफ इम्यूनो डेफिशियंट इश्यूज, तो उसके वजह से हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर एक छोटी छोटी चीज की. और वरना उसके फर गिर जाते हैं, उसको रैशेस आ जाते हैं, उसको बहुत इश्यूज होने लगते हैं. तो उसके वजह से मुझे बहुत चीजों का मैंने लेबल पढ़ना शुरू कर दिया है. मैंने चीजें वन इंग्रेडिएंट फूड ये वो पता नहीं क्या क्या सीखा है. तो ये चीज तो मैंने कभी अपने में देखी ही नहीं थी.
1: जी
0: बड़े हो गए हम इसमें.
1: Wow, such a beautiful statement towards the end of the show. कि सच में they make you better humans, they make you meet yourself and आपको वो sides आपके discover करवाते हैं जो शायद आपको भी नहीं पता था आपके अंदर हैं. तो they are so priceless and so special. They are, I think, one of the most special creatures that God has ever bestowed upon human race. इसी बात के साथ, इसी प्यारी बात के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, Die with a Smile. Bruno Mars.

0: बहुत ही प्यारे गीत सुने आज हमने. थैंक यू सो मच अनुष्का मैम आपकी सभी रिक्वेस्ट के लिए. दे वर वंडरफुल.
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो.
0: जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल है मेरा. आई एम श्योर कोई भी पेट पेरेंट ये इमेजिन तो नहीं करना चाहता, बट अगर मैं हाइपोथेटिकली आपसे पूछूं कि अगर आपका जीवन आप पेट्स के बिना इमेजिन करें तो वो लाइफ कैसी होगी, और जाते जाते अगर कुछ और थॉट्स आप हमारे साथ साझा करना चाहें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, फन, विटी, इमोशनल, किसी भी तरह के थॉट्स, तो यू आर वेलकम.
1: आई गेस मेरे पेट्स के बिना आई कैन नॉट इवन इमेजिन मतलब क्या होता मेरी जिंदगी का, पता नहीं, मतलब वही है मेरे जिंदगी का सबसे कलरफुल साइड. उसके बिना शायद बहुत ही ऐसे ब्लैंड, बहुत ही ऐसे कोरे कागज की तरह होती मेरी जिंदगी की. कुछ नहीं है उसमें, बस काम है, वापस आके सुबह उठते हैं, नौकरी करते हैं, वापस आते सो जाते हैं, यही होती है, और क्या होता.
0: बिल्कुल,
1: शायद मेरे पॉकेट में कुछ थोड़े ज्यादा पैसे होते, जिंदगी में थोड़ी शांति ज्यादा होती, बट खुशियां नहीं होती ना, मतलब इतना केओस, इतनी खुशियां, इतना जो छोटी छोटी नए नए चीजें जो डिस्कवर करते हर दिन, कुछ नया हो जाता है. ये सब कहाँ है, मेमोरीज कहाँ होती.
0: इतना इतना अनअबैश्ड, इतना अबैंडन के साथ आपने सारे क्वेश्चंस को आंसर किया. और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी आवाज में वो खुशी है जो मैं फील कर पा रही हूँ एज अ प्राउड पेट पेरेंट, एज अ हैप्पी पेट पेरेंट. आई थिंक योर लाइफ इज मच मच हैप्पियर विद देम, एंड आई विल नेवर विश अपॉन यू कि आपका एक भी दिन इनके बिना जाए. तो इसी नोट पे जी जी हम आज का ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं. थैंक यू सो मच अनुष्का मैम फॉर ऑल योर टाइम. बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके. बहुत
2: अनुष्का जी, आज आपसे बात करके एक बात और मजबूत हो गई कि पेट सिर्फ हमारे घर का हिस्सा नहीं होते, वो हमारे दिल और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. साशा, शीरो, सूजी और मार्शमेलो, इन सभी की कहानी ने हमें ये सिखाया कि प्यार, ट्रस्ट और सेकेंड चांसेस की कोई लैंग्वेज नहीं होती. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है कि इस खूबसूरत सफर को हम सभी के साथ आपने साझा किया. दोस्तों, अगर आप भी किसी बेजुबान को प्यार, सुरक्षा, एक घर दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, प्लीज दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा प्यार किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है. मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे एसएन रेडियो का एक खास प्रोग्राम जिंदगी के रंग पेट्स के संग. आपसे इजाजत लेती हूं, मिलते हैं फिर एक नई कहानी एक नए पेट के साथ. नमस्कार.
3: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी. अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें, और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है. तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें. नमस्कार.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: પઢંગલા ભાઈઓનું ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છીએ આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: रेडियो टंटिया भील 90.8 FM फिर से आपका स्वागत करता है. आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ और चलिए शुरू करते हैं कुछ प्रेरणादायक गीतों के साथ कुछ प्रेरणादायक बातें. दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी. तो लीजिए सुनिए.
2: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं. मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे. अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी. महाशय बैठे बैठे किताब पढ़ रहे थे. तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी. उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका. मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए. इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे. मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर. और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए. लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है. मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए. उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं. लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे. दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं. वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया. मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग. लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं. मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर.
1: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं. एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं. तब तक ये गीत सुनिए.

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के

0: खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप? अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: है।
1: बुमक बिम बुमक बिम बुमक बिम बुमक
0: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें।

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ

अपने अपने सपने, अपनी चाहते, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीत और प्रेरणादायक बातों में आज इतना ही। कल और नए गीत और नई बातें लेकर हम हाजिर होंगे।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनालिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनालिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, वो बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

प्यार में। महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ.

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए।

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: अरे दोस्तों।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: बेनियाज़े मैं पैमाने वफा हो जाना, बेनियाज़े मैं पैमाने वफा हो जाना, तुम भी औरों की तरह मुझसे जुदा हो जाना। हर एक से कौन मोहब्बत निभा सकता है, हर एक से कौन मोहब्बत निभा सकता है, सो उसने दोस्ती यारी तो की, वफा नहीं की। मैं क्या बताऊं कि क्यों उसने बेवफाई की, मैं क्या बताऊं कि क्यों उसने बेवफाई की, मैं क्या बताऊं कि क्यों उसने बेवफाई की, मगर यही कि कुछ ऐसा मिजाज था उसका। नमस्कार, आदाब और बहुत बहुत खुश आमदीद 90.8 FM की लहरों पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, संगीत का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये दूरियों को मिटाकर दो दिलों को एक ही धड़कन में पिरो देता है। आज अगस्त की इस सुहानी शाम को हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं फोन की घंटियों के जरिए एहसासों के उस सफर पर, जहां देश के अलग अलग कोनों से हमारे अजीज दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं। हर कॉल के साथ जिंदगी का एक नया तजुर्बा, कोई भूली बिसरी याद और दिल के बहुत करीब छुपी एक सुरीली फरमाइश खुलने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इंतजार किस बात का, मिलाते हैं आज के सफर की पहली कॉल और देखते हैं कि सुरों का कारवां आज किस शहर से शुरू होता है। ट्रन ट्रन। हेलो नितिन।
2: यस आरती जी, कैसी हैं आप?
1: आप कैसे हो नितिन?
2: बस मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। बोलिए बोलिए।
1: नितिन, तो अपने प्रोग्राम अल्फाज से सास तक से मैं बात कर रही हूँ और अभी हमारा ये फरमाइशी प्रोग्राम आने वाला है जिसमें मैं अपने दोस्तों की पसंद की गजलें उन्हीं की जुबानी पूछ के और फिर हम अपने प्रोग्राम में उसको एयर करेंगे। तो मुझे आप ये बताइए नितिन कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: आपको पता तो है।

0: Hariharan.
1: ओह यस, आई फॉरगॉट, आई एम सॉरी, हरिहरन। हाँ दोस्तों, नितिन का तो फेवरेट जो है वो हरिहरन के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तो नितिन, ये बताइए कि हरिहरन की आपको कौन सी गजल सबसे ज्यादा पसंद है?
0: सबसे ज्यादा तो ऐसा कह नहीं सकता, मुश्किल है, पर अब मैं एक गजल जो मुझे अभी मेरे एकदम जहन में आ रही है, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि
1: हाँ
0: हर गजल का एक मूड होता है। तो अभी एकदम
1: यस,
0: से मैं सोचा, हरिहरन का जैसे ही नाम लिया तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि क्यों ना आप ऐसा वो ये वाला गजल प्ले करें।
1: हाँ
0: साखिया जाए कहाँ, हम तेरे में कहाँ, शहर के शहर नजर आते हैं, ऐसे साखिया जाए कहाँ। ये लगाइए।
1: अरे वाह, आपकी तरह आपकी चॉइस भी बहुत उम्दा है। तो अब नितिन, एक और बात बताइए कि आप हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये गजल आपको इतनी
0: आपकी
1: क्यों
0: आवाज कट
1: पता।
0: रही है, आपकी आवाज कट रही है।
1: हाँ, आप ये बताइए हमें कि आपको ये गजल इतनी क्यों पसंद है।
0: गजल्स क्यों पसंद है? गजल्स में बहुत गहराई है, उसमें मतलब गानों में काफी लिरिक्स उसका बहुत तगड़ा होता है, और गजल से बहुत सुकून मिलता है।
1: ये तो जनरल आपने गजल्स के बारे में बोला, आपने जो अपनी पसंद की अभी गजल बताई है, मैं ये जानना चाहती हूँ इस पर्टिकुलर गजल में ऐसा क्या है जो आपको इतनी पसंद है।
0: द वेराइटी द वेरिएशंस ऑफ हरिहरन।
1: ओ, आवाज के उतार चढ़ाव।
0: एब्सोल्युटली
1: ओके, लिरिक्स भी तो उसमें मैटर करते हैं ना।
0: बहुत बढ़िया गजल है, लग बजाइए, मजा आएगा सब कुछ।
1: ओके नितिन, तो दोस्तों सुना आपने हमारे नितिन जी की कितनी जबरदस्त पसंद है। और ठीक है, मैं आपकी ये गजल एयर करूंगी। और थैंक यू सो मच नितिन प्रोग्राम में आने के लिए। ओके,
0: वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम
1: बाय।
0: धन्यवाद।

0: वाह क्या बात है। अभी आपने सुना कोची से हमारे रेडियो एसएन के अजीम डायरेक्टर और मेरे बेहद अजीज दोस्त नितिन राज जी को। हकीम नासिर साहब का लिखा ये शाहकार कलाम, साकिया जाएं कहां हम तेरे मैखाने से, शहर के शहर नजर आते हैं वीराने से। और उस पर हरिहरन साहब की वो मखमली रूहानी आवाज इस गजल ने महफिल में एक गहराई और ठहराव सा भर दिया है। नितिन की ये पसंद आज के पूरे प्रोग्राम की शान बन गई है दोस्तों। शुक्रिया नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी नफीस गजल सुनवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलाते हैं आज की अपनी दूसरी कॉल। टन टन टन टन।
1: हेलो उषा।
2: हेलो,
1: हेलो, आई एम गुड। तो उषा कैसी हो?
2: अच्छी हूँ।
1: गजलों का प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड तो वही वो सुनते हुए फिर सोना है, बस वही हो रहा है।
1: लोरी लोरी के माफिक हो गई गजलें।
2: हाँ, सच्ची।
1: तो उषा, फरमाइशी प्रोग्राम में आप बताओ कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: हाँ, गजल सिंगर्स तो बहुत हैं, बट मैंने अभी चुना है, मैं सुनना चाह रही हूँ आशा तय का गाया हुआ। गुलजार साहब ने लिखा हुआ है।
1: अच्छा, मतलब आपकी फेवरेट गजल आशा तय की कौन सी है?
2: हाँ, शाम से आँख में नमी सी है ये वाला।
1: वाओ, ये ओरिजिनल ही तो दिलजीत सिंह जी ने गाया है ना?
2: करेक्ट करेक्ट।
1: ओके ओके, ये इतना क्यों पसंद है आशा ताई का ये वाला वर्जन?
2: ये वाला वर्जन शायद मुझे, ऑफ कोर्स बोल तो अच्छे हैं, पंचमदा का कंपोजिशन इसीलिए मुझे पसंद है।
1: योर फेवरेट इज पंचमदा, दैट्स व्हाई यू लाइक इट सो मच। ओके, यू आर वेरी लॉयल एज फार एज योर चॉइस इज कंसर्न्ड अबाउट पंचमदा। आई नो दैट यू आर डाई हार्ड फैन ऑफ पंचमदा। राइट राइट, तो ये वजह है। ओके ओके उषा डार्लिंग, तो हम सुनते हैं फिर सब दोस्तों के साथ आपकी यही पसंद आशा ताई की आवाज में, शाम से आंख में नमी सी है। ओके, तो आइए दोस्तों, चलो फिर सुनते हैं। थैंक यू, बाय
2: बाय।

क्या ही बात है दोस्तों, हैदराबाद से हमारी बहुत ही खास दोस्त उषा नागराजन जी की ये पसंद सीधे दिल को भिगो जाती है। उषा जी खुद एक बहुत बेहतर

0: आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर और मिलाते हैं हमारी तीसरी कॉलर।
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार आरती जी।
2: हेलो अपर्णा, कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरती जी, आप कैसी हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपर्णा।
1: बताइए,
2: हमारे गजलों के प्रोग्राम में हम अपने अजीज दोस्तों को फोन कर रहे हैं उनकी पसंद जानने के लिए कि उनको कौन सी गजल और कौन सा गजल सिंगर और वो गजल उनको क्यों पसंद है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपर्णा से पूछूं कि उसकी पसंद की गजल कौन है। तो अपर्णा, आप हमें बताइए आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है और कौन सी गजल पसंद है आपको?
1: सो स्वीट ऑफ यू आरती जी, सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मुझे शामिल किया आपके गजल के प्रोग्राम में।
2: You're most welcome.
1: पता नहीं कि आपने सही इंसान को चुने हो या नहीं, क्योंकि मैं गाने तो बहुत सुनती हूँ मगर गजलों की उतनी शौकीन नहीं हूँ।
2: okay.
1: या तो हाँ, नहीं यूँ कह सकती हूँ कि मैं गजलों के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, साउथ इंडियन होने के नाते शायद मैं वो शब्दों की गहराई शायद महसूस नहीं कर पाती हूँ ना, तो ये हो सकता है।
2: Yeah, I can understand.
1: फिर भी हाँ, नहीं नहीं, फिर भी जब मैं वो बॉलीवुड गानों में गाने जब सुनती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और बाद में पता चला कि उनमें कुछ गजलें भी थे।
2: वेरी नाइस। तो आपने मैं से बता दीजिए।
1: सॉरी, मैं आपने पूछा और मैं घूम फिर के बात कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब दूंगी। वैसे तो मैं मोहम्मद रफी साहब की बहुत बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ आरती जी।
2: ओके,
1: ये गाना मैंने शायद पहली बार सुना था जब मैं वो स्टैंडर्ड 12 पास करके वो इंजीनियरिंग स्टार्ट होने से पहले वो छुट्टियां होती है ना,
2: हाँ जी,
1: उस टाइम की बात है। तो पहली बार मैंने वो गाना रेडियो पे सुना था। गाना है तो बोल ऐसे जाती है कि कहीं एक मासूम नाजुक सी,
2: अरे वाह
1: वाह, बहुत खूबसूरत मगर सावली सी, सॉरी ऐसी आवाज में गा रही हूँ,
2: बहुत सुंदर गा रही है आप। मुझे भी ये, मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत सुंदर है। आई थिंक वो लिरिक्स कमाल अमरोही जी के हैं, म्यूजिक खयाम जी के हैं।
2: ओके,
1: इसका नाम मुझे याद नहीं है आरती जी।
2: ओके, कोई बात नहीं।
1: हाँ, एक्चुअली मैंने कहा ना आपको उस वक्त की बात है, तो इसलिए मासूम मैं कितना थी जानती नहीं हूँ मगर सामने हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि रफी साहब मेरे लिए गा रहे थे।
2: So
1: आरती जी, तो आप ये गाना मेरे लिए प्ले कर सकते हैं आरती जी?
2: एनी टाइम स्वीट हार्ट, एनी टाइम, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू अपर्णा, व्हाई नॉट। आपने सब चीजें बता दी, आपका फेवरेट गजल सिंगर, आपको गजल क्यों पसंद है, गजल के बोल बता दिए, एवरीथिंग यू हैव कवर्ड स्वीट हार्ट। तो हम फिर सुनते हैं अपने दोस्तों के साथ अपर्णा की पसंद, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी। ओके, थैंक यू सो मच।

0: दोस्तों, बेंगलुरु से हमारी बहुत ही प्यारी और सुरीली कॉलर अपर्णा, जिसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी सादगी और सुकुचाते हुए मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, आरती की ये गाना मुझे इसलिए बेहद पसंद है क्योंकि मैं भी सांवली हूँ और जब ये गाना बजता है तो मैं खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। अपर्णा की ये मासूम और सच्ची बात वाकई मेरे दिल को छू गई। अपर्णा डियर, खूबसूरती तो दिल और सादगी में होती है। आपकी इस बेहद भावुक और प्यारी फरमाइश ने आज के शो को एक अनमोल एहसास दे दिया है। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत सांवली सी बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी, वाकई बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा। चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं हमारे चौथे कॉलर की तरफ। टन टन टन टन।
1: हेलो
2: हेलो शैलेंद्र। हेलो शैलेंद्र।
1: हेलो आरती जी, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, आप कैसे हो?
1: हेलो आरती जी,
2: आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: आई एम ऑल्सो गुड नाउ।
2: ओके ओके,
1: जी जी आ रही है।
2: तो शैलेंद्र, गजलों के प्रोग्राम में फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया है मैंने, तो मैं अपने अच्छे सब एसएन फैमिलीज के जितने भी लोग हैं जो मैं समझती हूँ कि गजल सुनते हैं और आते हैं, तो मैंने उनको फोन करने का सोचा कि जाना जाए कि उनकी पसंद की गजल सिंगर कौन है और उनकी गजलें कौन सी पसंद हैं और क्यों पसंद हैं। तो यही तीनों सवाल मैं शैलेंद्र आपसे भी करती हूँ। तो आप सुनते हैं ना मेरा प्रोग्राम?
1: जी जी, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है और आपके इस प्रोग्राम से गजलें सुनने का एक अच्छा मौका मिल गया है हम सबको।
2: दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। ओके, तो बताइए फिर, आपकी कौन सी फेवरेट आपका गजल सिंगर है?
1: जी, मेरे फेवरेट गजल सिंगर है हरिहरन जी।
2: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, हरिहरन जी, वेरी नाइस। और हरिहरन जी फेवरेट आपके गजल सिंगर हैं और इनकी फेवरेट गजल भी होगी कोई?
1: जी जी बिल्कुल है, उनकी तो बहुत गजलें हैं।
2: जैसे
1: जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है,
2: हाँ जी, हाँ
1: मैं, जी जी जी, ये उनकी गजल है गुलफाम, उनका एक एल्बम था गजल का, तो उसमें से वो है मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जैसे कि मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं।
2: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और इतनी ज्यादा ये गजल आपको क्यों पसंद है, कोई खास वजह है इसकी?
1: हाँ, इसकी खास वजह यह है कि जब हम कॉलेज में थे तो हमारा एक ग्रुप था, सिंगिंग ग्रुप।
2: ओके,
1: तो उस वक्त तो ये बात है 1995-96 की।
2: ओके,
1: तो उस वक्त तो कैसेट चलती थी।
2: अच्छा,
1: तो मेरे एक दोस्त जो दीपक थे उन्होंने वो कैसेट लेके आए थे और वो कैसेट गुलफाम का कैसेट था और उसमें मैं ये गजल सुना, ये गजल पहली बार मैंने सुना तो एंड मैं उसका दीवाना हो गया।
2: वाह, आपकी याद कितनी मुश्किल है लेकिन आपकी बहुत शिद्दत से आपने इस चीज को याद रखा, वेरी नाइस और बहुत सुंदर। मुझे आपका ये आपकी याद एक्चुअली बहुत पसंद आई कि आपका रीजन क्या है, आपको एक एक तारीख वर याद है सारी बातें, वेरी नाइस। तो सुनाते हैं फिर आपको मुझे फिर वही याद आने लगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं
1: जिन्हें शैलेंद्र लगे हैं।
2: हाँ, शैलेंद्र की पसंद पर हरिहरन साहब की ये बहुत खूबसूरत सी गजल, और आप भी सुनिए। थैंक यू शैलेंद्र।

0: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। अब दोस्तों वक्त आ गया है अपने इस टेलीफोनिक सफर की आखिरी कॉल मिलाने का। तो आइए देखते हैं कि कौन है हमारे आखिरी कॉलर। ट्रन ट्रन ट्रन ट्रन।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी,
0: हेलो राजीव,
1: नमस्कार जी।
0: कैसे
1: जी
0: हो
1: नहीं जी,
0: आप?
1: आई एम फाइन। यस,
0: तो क्या गजल की प्रैक्टिस कर रहे थे कोई?
1: नहीं, आज सुबह तो एक दिन में एक गजल रिकॉर्ड की थी मैंने। रोज
0: अरे वाह, तो
1: एक दो गजल तो करता हूँ जी।
0: अच्छा, वेरी नाइस, बहुत पैशनेट सिंगर हैं आप गजलों को लेकर।
1: हाँ, मेरे को तो I'm singing all the singers, but गजल इज वेरी क्लोज टू मी ना। तो
0: ओके ओके, आई नो दैट।
1: फिल्मी फिल्मी गाने सब गाता हूँ, बट गजल इज वेरी क्लोज।
0: इसीलिए राजीव, हम गजलों के प्रोग्राम में अब आपकी फरमाइश प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो
1: जी
0: आपसे बेहतर लाइक चॉइस और क्या हो सकती है? जो इतने पैशनेट गजल सिंगर हैं, तो मैंने आपके बारे में सोचा कि आपको फोन करके
1: जी
0: आपसे पूछा जाए कि राजीव, आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है? जो कि मैं वैसे जानती हूँ, और उसकी फेवरेट गजल कौन सी है वो आप जानते हैं, और वो
1: सो
0: गजल
1: नाइस
0: आपको
1: ऑफ यू,
0: क्यों
1: थैंक यू।
0: पसंद है ये भी आप जानते हैं,
1: जी
0: तो हम
1: जी जी
0: बताइए हमारे दोस्तों को।
1: यस मैडम, जैसे कि आपने मुझे पूछा, मैं हार्डकोर फैन हूँ गजल्स का, सभी सिंगर्स की गजल गाता हूँ, बट डेफिनेटली मैंने जो गजल को जाना वो जगजीत सिंह जी के थ्रू जाना
0: बिल्कुल।
1: जी। तो मैं तो जगजीत सिंह जी को सबसे ज्यादा गाता हूँ, सबसे ज्यादा मैंने बहुत यंग एज से उनको सुना और उनको गाता भी हूँ। नंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, सभी को गाता हूँ,
0: सभी को
1: बट
0: गाते हैं
1: जगजीत सिंह जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं गजल्स में।
0: बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि जगजीत सिंह साहब की, मैं जानती हूँ आपको बहुत सारी गजलें पसंद होंगी, लेकिन फिर भी एक होती है जो दिल के बहुत करीब होती है, वो बताइए।
1: जी मैडम, रिसेंटली जैसे देर आर सो मेनी गजल्स वेरी क्लोज टू मी, बट रिसेंटली मैं जो एक गजल दो तीन बार रिकॉर्ड किया हूँ और सुन भी रहा हूँ, बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे,
0: अरे वाह,
1: मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे जी।
0: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और
1: ये
0: किस गजल
1: इसमें एक
0: आपको
1: लाइफ
0: इतनी
1: की
0: पसंद है?
1: फिलॉसफी है,
0: नेचुरली।
1: इसमें इसमें मैडम लाइफ की एक फिलॉसफी है। वैसे भी गजल्स जो हैं वो फिलोसॉफिकल ज्यादा हैं, दर्द बहुत है गजलों में, तो ये गजल बहुत प्यारी मुझे लगती है। अभी मैं कल ही इसको रिकॉर्ड किया था
0: अच्छा, आपने रिकॉर्ड भी किया, तो फटाफट एक लाइन सुनाइए इसकी।
1: जी। बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे,
0: वेरी नाइस।
1: बदला ना अपने आप को, जो थे वहीं रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी
0: वाह वाह,
1: रहे। दिस इज अ ब्यूटीफुल गजल यार।
0: यस ऑफ कोर्स। तो आपने बताया ही कि आपको इसकी फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपको शायद ये गजल बहुत पसंद है। तो
1: जी
0: चलिए फिर सुनते हैं आपके साथ, हमारे दोस्तों के साथ मिलके आपकी पसंद की ये गजल। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच
1: थैंक यू
0: हमसे
1: वेरी
0: जुड़ने
1: मच
0: के लिए।
1: मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू।
0: थैंक यू।

गजलों से इतना गहरा लगाव है कि वो रोज तीन चार गजलें खुद रिकॉर्ड करते हैं और जगजीत सिंह साहब के तो बहुत बड़े फैन हैं। निदा फाजली साहब का लिखा ये लाजवाब कलाम और 1993 की टिप्स एल्बम से जगजीत जी की आवाज में निकली ये गजल, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, सीधे रूह तक पहुंचती है। राजीव जी, आपकी इस खूबसूरत पसंद ने आज अल्फाज से एहसास तक के इस पूरे टेलीफोनिक सफर को एक बेहद यादगार ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगी। अभी जो हमारे तीन ये कॉलर्स थे, अपर्णा, शैलेंद्र और राजीव, बात करते करते मुझे ये पता चला कि ये तीनों स्टार मेकर के एक ग्रुप में कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, मतलब दोस्त हैं, स्टार मेकर के ग्रुप के ही मेंबर भी हैं। और कोइंसिडेंस देखिए कि मैंने तो ऐसे ही मतलब इनका नाम इस ऑर्डर पे चुना था, लेकिन शैलेंद्र से बात करने के बाद पता चला कि ऐसा भी माजरा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो अपर्णा, शैलेंद्र और राजीव, आप अपने स्टार मेकर के ग्रुप में इसी तरह गाते रहें और नई ऊंचाइयों को छूते रहें। तो दोस्तों, अगस्त की सुहानी शाम को फोन की घंटियों के साथ पिरोई हुई एहसासों की ये माला आज यहीं पर मुकम्मल होती है। कोची से नितिन राज जी, हैदराबाद से उषा नागराजन, बेंगलुरु से हमारी प्यारी अपर्णा, कोल्हापुर से शैलेंद्र कुमार जी और जबलपुर से राजीव पांडे जी, आप सभी के प्यार और पसंद ने आज की शाम को बेहद खास बना दिया। चलते चलते आज की इस रूहानी शाम के नाम दो सत्रें याद आ रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाए। फासले जिस्मों के हों तो कोई बात नहीं, फासले जिस्मों के हों तो कोई बात नहीं, दिल से दिल का ये ताल्लुक कभी कम ना हो। इसी सुरीले एहसास, मीठी यादों और अपनायत के साथ अब आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत। अगले कल फिर इसी वक्त कुछ नई फोन कॉल्स और कुछ नए दिलकश एहसासों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, अपनों के साथ रहिए। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. નમસ્કાર કિસાન ભાઈઓ, સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. હું છે આરજે રાકેશ અને રોજની જેમ તમારી વસમાં આજ ફેર કાર્યક્રમ ખેતીવાડી લઈને હાજર થયો છે. અને કિસાન ભાઈઓ, હું રોજ તમારી વસમાં ખેતીવાડી દેખા જોડાયેલા મુદ્દા, ખેતીવાડીની સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાતો લઈને રોજ એના સમય પર હાજર થતો રહું છે. આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપુ વાતો સાંભળવાના છે કૃષિમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતીની વાતો. તો કિસાન ભાઈઓ, જેવી રીતે હાવ જગે જગે પર ફૂલનો ઘણો ઉપયોગ શરૂ થઈ ગયો છે અને મંદિરોમાં, કાર્યક્રમોમાં અને વિવાહમાં પણ ફૂલની ઘણી માંગ રહેશે. તો કિસાન ભાઈઓ, એ એક નગદી ફસલ છે અને એની ખેતી કરીને આપું ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ શકીએ. કેવી રીતે કમાઈ શકીએ એ બધી વાતો આપું સાંભળવાના છે કૃષિથા જોડાયેલા વિશેષજ્ઞ અને અનુભવી લોકો દેખી. હાથે હાથ એક એવા કિસાન ભાઈ દેખી જ્યાં ગેંદાની ખેતી કરીને ઘણો અસલ અને મોટો લાભ કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, હા વાર નહીં કરી અને હા મળી કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં ગેંદાના ફૂલની ખેતી.
2: हमारे देश में गेंदे के फूल की एक अलग ही जगह है. जी हाँ, धार्मिक कामों की बात हो या फिर सामाजिक अवसरों की बात हो, इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया ही जाता है. ये बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते ये लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता है. और साथ ही बता दें, इसकी खासियत यह है कि ये लंबे समय तक तरोताजा बना रहता है. और आपको बता दें कि हमारे देश में अब साल दर साल इसकी मांग बढ़ती जा रही है, इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इसकी खेती पर भी देखने को मिल रहा है. इसकी खेती का स्तर काफी बेहतर हो गया है हमारे देश भारत में. तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही साथ गेंदे से जुड़े विशेषज्ञ और सफल किसानों से हम मुलाकात भी करेंगे. आज हमारे खास कार्यक्रम में बात होगी गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में. गेंदा एक बहुत ही आकर्षक और सुगंधित फूल होता है जिसके चलते बाजार में इसकी मांग जो है लगातार देखने को मिलती है. और बता दें आपको कि 12 मासी इसकी खेती की जा सकती है. ऐसे में किसान अगर इसकी व्यावसायिक खेती को अपनाते हैं तो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं. तो फिर आइए जानते हैं गेंदे की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें.
3: भारत में गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल माना जाता है. धार्मिक अनुष्ठानों में तो गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर बनी रहती है. भारत जैसे देश में जहां दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, इनमें भी गेंदे के फूल का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है. गेंदे के फूल लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए इनका उपयोग सजावट के काम में लाया जाता है. कम समय के साथ कम लागत की फसल होने के कारण ये भारत की लोकप्रिय फसल बन गई है. गेंदे के फूल आकार और रंग में आकर्षित होते हैं. इसकी खेती आसान होने के कारण किसान इसकी खेती इसे व्यापक स्तर पर कर रहे हैं. बात करें इसकी उत्पत्ति की तो दोनों मुख्य किस्में फ्रांसीसी गेंदे और अफ्रीकन गेंदे का प्रसार 16वीं सदी से मैक्सिको से हुआ था, जो कि धीरे धीरे अपनी मनमोहक सुंदरता के कारण दुनिया भर में फैल गया. आज के समय में भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जा रही है.
2: मनमोहक और सुंदरता के चलते गेंदे के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं. पूजा अर्चना की बात हो, सजावट की बात हो, तो गेंदे के फूल का इस्तेमाल किया ही जाता है. साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं. आइए इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं.
3: अपनी औषधीय गुणों के कारण गेंदा का एक खास महत्व है. आयुर्वेद के अनुसार गेंदा में कई सारे औषधीय गुण हैं और ये एक जड़ी बूटी भी है. मोचाने पर सूजन की समस्या और घाव में गेंदा के इस्तेमाल से फायदे मिलते हैं. इसके अलावा डायबिटीज में भी गेंदा से लाभ मिलता है.
4: गेंदे के उपयोग की बात की जाए तो ये खुले रूप में उपयोग किया जाता है काफी तौर पे, और इसको मुख्य तौर पे माला बनाने में काम में लिया जाता है. मंदिरों में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे. और अगर इसकी आजकल देखे जाएंगे तो गेंदे के पुष्पों से गुलाल बनाने की विधि भी स्टैंडर्डाइज की जा रही है. और आप देखेंगे ये जो है गेंदा, इसमें एक और मुख्य तौर पे मैं बताना चाहूंगी, ये कैरोटीनॉइड रिच होता है, इसमें एक पिगमेंट पाई जाती है जिसे ल्यूटिन कहा जाता है। तो इसको मुर्गी आहार में मिलाया जाता है और इसकी अंडे का जो पीलापन होता है, यग एग योग बोलते हैं, उसका पीलापन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग यह है कि ल्यूटिन को कहते हैं कि ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के काम में मदद करता है, जिससे और बुढ़ापे में इसमें एक डिजीज आती है जैसे आदमियों में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, तो उससे बचाता है।
2: चाहे फसल कोई भी हो, अगर वैज्ञानिकों की सलाह मिल जाए तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। फसल संबंधित विशेषज्ञों की जो सलाह है वो काफी अहम भूमिका निभाती है। तो ऐसे में क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह गेंदे की व्यवसायिक खेती को लेकर, आइए आपको बताते हैं।
3: गेंदा की खेती मुख्य रूप से सर्द मौसम में की जाती है। इस मौसम में गेंदा की बड़बार और फूलों की गुणवत्ता दोनों अच्छी होती है, जिस वजह से वैज्ञानिकों द्वारा ये मौसम इसके लिए अनुकूल माना गया है। हालांकि किसान भाई गेंदे की खेती मानसून, सर्दी और गर्मी तीनों मौसमों में कर सकते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर इसकी खेती करें तो अच्छी उपज भी हासिल कर सकते हैं।
4: जैसे कि पहले देखा गया है कि नंबर एक पर हमारा जैस्मिन पुष्प था, पर कुछ वर्षों में, लगभग 5-6 वर्षों में इसकी जगह गेंदा ने ले ली है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप होता जा रहा है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये मेक्सिको में इसका उत्पन्न हुआ है, उसके बाद ये 16वीं सदी में भारतवर्ष में आया है और ये पुर्तगीज ने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तब से लेकर अब ये ऐसा लगता है कि ये भारतवर्ष की ही फसल हो गई है, क्योंकि इसको पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उगाया जाता है। और अगर इसके मुख्य राज्यों की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब राज्यों में इसकी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो चुका है। और नए राज्य भी आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, इसमें भी इसके काफी इसका प्रचलन हो रहा है।
3: गेंदे की खेती करते समय किसान कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। गेंदा की खेती के लिए जल निकास वाली दोमट मिट्टी का उपयोग करें। गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी होता है। गेंदे की नर्सरी के लिए ऊंचे स्थान का चुनाव जिसमें समुचित जल निकास हो सके। नवंबर दिसंबर में फूल प्राप्त करने के लिए बीज को अगस्त माह में नर्सरी में बोना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब पौधा लगभग 30 से 35 दिन की या 4-5 पत्तियों की हो जाए तब उसकी रोपाई कर लेना चाहिए। पौधों की रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। रोपाई के बाद पौधे के चारों ओर से मिट्टी को हाथ से दबा देना चाहिए।
4: इसको बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको 1 हेक्टेयर के लिए 800 से 1 किलोग्राम सीड लगता है और इसके 3 सीजन में लगाया जाता है, ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और रेनी सीजन। अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो इसको फरवरी में लगाया जाता है और इसका रोपण मार्च में किया जाता है। अगर हम रेनी सीजन की बात की जाए तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा जून जुलाई में और उसके अगस्त में इसका रोपण होना चाहिए। अगर हम शीतकालीन ऋतु की बात की जाए तो इसको हम सितंबर के एंड में लगा सकते हैं और अक्टूबर में इसका रोपण किया जा सकता है।
3: गेंदे की फसल लेने के लिए खेत को तैयार करते समय एक गहरी जुताई कर 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेनी चाहिए। इसके अलावा जुताई के समय 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जमीन में मिला दें ताकि उपज अच्छी मिल सके। 6 बोरी यूरिया, 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 3 बोरी पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में मिला दें। यूरिया को 3 बराबर भागों में बांटकर 1 भाग एवं सिंगल सुपर फास्फेट व पोटाश की पूरी मात्रा को रोपाई के समय दें। गेंदे की बुआई अगर किसान लाइन में करें तो लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। किसान भाई गेंदे की खेती को थोड़ा ऊंचाई दें ताकि पानी का जमाव ना हो सके, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है।
4: गेंदे को लगाने के लिए हमें सबसे पहले नर्सरी बेड तैयार करने पड़ेंगे। नर्सरी की बेड की लंबाई आप 3-4 मीटर तक रख सकते हैं। इसकी चौड़ाई 1 मीटर रखी जाएगी और इसको ऊंचा रखना पड़ेगा ताकि इसमें पानी रुके ना। तो उसकी हाइट आप सकते हैं 10-15 सेंटीमीटर। आपको इसको पंक्ति में लगाना पड़ेगा। पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और जब आप इसको लगा दीजिएगा तो आपको इसके ऊपर FIM से ढक दीजिएगा। आप देखेंगे लगभग 20 से 25 दिन में हमारी पौध तैयार हो जाती है रोपण के लिए और हम इसको मेन मुख्य खेत में लगा सकते हैं। मुख्य खेत में भी इसको लगाने की अपनी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे कि अफ्रीकी गेंदा जो कि मैंने कहा कि काफी ऊंचा होता है, उसको आप 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते थे, और फ्रांसीसी गेंदा को आप 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। पर फ्रांसीसी गेंदा में हमारी पूसा की वैरायटी है पूसा अर्पिता, जो कि एक एक्सेप्शन है, वो काफी लंबी होती है, उसको आपको 60 सेंटीमीटर पे ही लगाना पड़ेगा।
2: कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे।

ga ma ga da

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए गेंदे की खेती के बारे में और विस्तृत जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं।
1: गेंदा की खेती के लिए दोमट और बलुआर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जिसमें उचित जल निकास की व्यवस्था हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 होना बेहतर होता है। सिंचाई की बात करें तो ये मौसम में निर्भर करती है। सर्दी में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर और गर्मी में 4 से 5 दिन पर भी गेंदे की फसल में सिंचाई करें। गेंदे को अच्छी देखभाल मिले इसके लिए पौध 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है।
2: इसको लगाने के लिए आपको मिट्टी का पीएच लगभग 7 से 7.5 चाहिए और मिट्टी जो है सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और अगर आप सिंचाई की बात की जाए तो ये मौसम पे निर्भर करती है। मौसम मतलब सर्दी में आप इसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे कर सकते हैं, बल्कि गर्मी में ये अंतराल 4 से 5 दिन का ही रह जाता है। अगर हम पोषक तत्वों की बात की जाए तो हमें शुरू में ही इसके लिए 20 से 25 टन पर हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी पर हेक्टेयर के लिए, और कम से कम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम पोटाश और 80 किलोग्राम ही फास्फोरस लगता है। इसके अलावा आप नाइट्रोजन की अतिरिक्त डोज भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिया 0.1%, पर ये फूल आने से पहले तक ही दी जानी चाहिए। फूल आने के बाद यूरिया का उपयोग बंद कर दीजिए।
0: किसी भी फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में उन्नत किस्मों का चयन जो है काफी अहम भूमिका निभाती है। ठीक ऐसा ही है गेंदे की फसल के साथ भी। अगर हमारे किसान भाई बहन गेंदे की उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है।
1: गेंदा की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव करना चाहिए। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अफ्रीकन और फ्रांसीसी। अफ्रीकन गेंदे की किस्मों की बात करें तो इसके पौधे अनेक शाखाओं से युक्त लगभग 1 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनके फूल गोलाकार बहुगुणी पंखुड़ियों वाले तथा पीले व नारंगी रंग के होते हैं। बड़े आकार के फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ बौनी किस्में भी होती हैं, जिनकी ऊंचाई सामान्यतः 20 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन गेंदा के अंतर्गत व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले प्रभेद पूसा नारंगी, पूसा बहार, पूसा बसंती, अफ्रीकन येलो शामिल हैं, जिनका चयन कर किसान भाई अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही बाजार में भी इन किस्मों की मांग भी काफी है और दाम भी अच्छा मिलता है।
2: इसमें दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक अफ्रीकी गेंदा है और एक फ्रांसीसी गेंदा है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो लंबा होता है, उसकी हाइट ज्यादा होती है। फ्रांसीसी गेंदा जिसको जाफरी भी कहा जाता है वो थोड़ा शॉर्ट स्टेचर नेचर के होते हैं। अगर अफ्रीकी गेंदा की बात की जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी किस्में विकसित की हैं, जिसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार, पूसा बसंती गेंदा शामिल हैं। और अगर हम फ्रांसीसी गेंदा की बात करें तो उसमें पूसा अर्पिता, पूसा पर्व, पूसा दीप, पूसा उत्सव शामिल है।
1: वहीं बात करें फ्रांसीसी गेंदे की तो इस प्रजाति की ऊंचाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती, लेकिन इसमें इतने अधिक पुष्प आते हैं कि पूरा का पूरा पौधा ही पुष्पों से ढक जाता है। इस प्रजाति के कुछ उन्नत किस्मों में पूसा अर्पिता, पूसा दीप, पूसा पर्व, रेड ब्रोकेट, कपिल येलो, बोलेरो, बटन स्कोच आते हैं।
2: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अलावा भी भारत में बहुत जगह पे गेंदे पे काम हो रहा है, जैसे कि आपके IIHR बेंगलुरु में, इसमें भी गेंदे पे काफी काम हो रहा है। इनके यहाँ से बहुत सारी किस्में निकली है, जैसे कि अर्का बंगारा, अर्का अलंकारा, अर्का अग्नि और भी बहुत सारी किस्में हैं। इसके अलावा BCKV कल्याणी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां से भी वैरायटीज निकली है, बिधान मैरीगोल्ड 1, बिधान मैरीगोल्ड 2। और यहां हरियाणा में यहां से 2 वैरायटीज निकली है, हिसार जाफरी, हिसार ब्यूटी।
0: गेंदे की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पिंचिंग और सही समय पर तुड़ाई और भंडारण का खास स्थान है। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
1: रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर पौधे की मुख्य शाखीय कली को तोड़ देना चाहिए। इस क्रिया से फूल थोड़ा देर से आएंगे, लेकिन पौधा फूल की संख्या एवं उपज में वृद्धि होती है। जरूरत के हिसाब से निकाई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन पर करनी चाहिए। इसमें फसल के बीच हवा का संचार ठीक से होता होता है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रुपाई के 60 से 70 दिन पर गेंदा में फूल आता है जो 90 से 100 दिनों तक आता रहता है। शीतकालीन फसल जनवरी के मध्य में फूल देना शुरू कर देती है, वहीं मानसूनी फसल सितंबर के मध्य से फूलों का उत्पादन देने लगती है। ग्रीष्मकालीन फसल में मध्य मई से फूलों का आना शुरू हो जाता है। वहीं बात करें फूलों की तुड़ाई की तो गेंदे की फसल 70 से 80 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान इसकी तुड़ाई सुबह के वक्त करें और तोड़कर ठंडी जगह में इकट्ठा कर लेनी चाहिए। इसके बाद बांस की टोकरियों में भरकर इसे बाजार में भेज देना चाहिए।
2: गेंदे में शीर्ष नोचन भी किया जाता है जिसे आमतौर पर पिंचिंग कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीकन प्रजातियों पे किया जाता है क्योंकि वो उनकी लंबाई ज्यादा होती है। अगर शीर्षनोचन वहाँ नहीं किया गया तो उनकी आंतरिक शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है जिसकी वजह से गेंदे की यील्ड कम हो जाती है। तो हम इसको रोपण करने के बाद लगभग 25 से 30 दिन पे शीर्षनोचन की क्रिया को करते हैं, उससे इसकी अतिरिक्त शाखाएं उत्पन्न होती है और हमारी उत्पादकता ज्यादा आती है। और ये फसल 70 से 80 दिन में लगभग तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसमें हम 4 से 5 बाई तुड़ाई कर सकते हैं। और अगर इसके यील्ड की बात की जाए तो इसमें भी अफ्रीकी और फ्रांसीसी गेंदा पे निर्भर करती है। अफ्रीकी गेंदा जो है वो 20 से 24 टन पर हेक्टेयर की यील्ड दे सकते हैं, बल्कि फ्रांसीसी गेंदा में यील्ड आती है 18 से 20 टन पर हेक्टेयर।
0: फसलों में कीट और बीमारियों का लगना हमारे किसानों के लिए किसी भी बड़ी मुसीबत से कम नहीं होता। ऐसे में फसलों को तो क्षति पहुंचती ही है, साथ ही साथ हमारे जो किसान हैं उनकी कुल आमदनी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई तकनीकों का उपयोग करके इनका प्रबंधन किया जा सकता है।
1: अन्य फसलों की भांति गेंदे की फसल में भी रोग लगने का खतरा होता है। ऐसे में किसान भाइयों को सही समय पर रोग नियंत्रण सावधानियां बरतनी चाहिए। गेंदे की फसल में ज्यादातर कैटरपिलर, लीफ हॉपर और रेड स्पाइडर जैसे कीट लगने का खतरा होता है जो इसे काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए मेलाथियन 0.1% का छिड़काव करें। गेंदा में मोजेक, चूर्णी, फफूंद मुख्य रूप से लगता है। मोजेक लगे पौधों को उखाड़कर मिट्टी तले दबा दें एवं गेंदा में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें, जिससे मोजेक के विषाणु स्थानांतरित करने वाले कीट का नियंत्रण हो, इसका विस्तार पर रोक लगे और वो अन्य पौधों को नुकसान न पहुंचाए। चूर्णी फफूंद के लिए तो 0.2% गंधक का छिड़काव करें।
2: अगर हम मुख्य रोगों की बात की जाए तो मुख्य रोग इसमें नर्सरी स्टेज पे भी आता है जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये सॉइल बॉर्न फंगस की वजह से होता है और हम इसके रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इससे इसका नर्सरी स्टेज पे ही इस फंगस का कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम मुख्य खेत पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी अल्टरनेरिया एक खास रोग है जो लगभग हर सीजन में आता है। इसके लिए भी कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम मुख्य कीटों की बात की जाए तो इसमें कैटरपिलर्स काफी ज्यादा आते हैं, उसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड 0.2% का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिड भी आते हैं इसमें। एफिड के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटासोर्स स्टॉक, रोगर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए हमारे देश की सरकार और साथ ही कृषि विभाग नित नए प्रयास करते रहते हैं। तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं और समय समय पर हमारे किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है। आइए इसके बारे में भी आपको जागरूक करते हैं।
1: समय के साथ साथ खेती किसानी में कई बदलाव आ चुके हैं। किसान पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम लागत में बम्पर मुनाफा देने वाली फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहा है। गेंदे का फूल भी कुछ इसी तरह की फसल है, जो कम खर्च और कम मेहनत में अधिक उपज और आमदनी देने वाली फसल है। ऐसे में परंपरागत खेती के साथ साथ किसान फूलों की खेती भी करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। किसान भाइयों को फूलों की खेती में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए सरकार भी भरपूर प्रयास करती रहती है। सरकार किसानों को गेंदे की खेती करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
2: किसान भाइयों, हमारी जो जनपद में योजना संचालित है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसके तहत जो फूलों की खेती करके किसान भाई एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग किसानों को गेंदा, गुलाब इत्यादि फूलों की जो खेती है करते हैं उनको 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देते हैं। साथ साथ ही जो इनपुट लगता है एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर, इसको भी हम किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। और किसान भाई गेंदा या फूलों की खेती करके जो हमारी खेती है उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट रेट है बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो फूलों की डिमांड है जो वर्ष भर बनी रहती है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ ही जो किसान भाई कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिसमें प्लांट टू प्लांट दूरी ज़्यादा है, तो उसमें इंटर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जैसे किसान भाई अगर गन्ना कर रहे हैं तो गन्ने के बीच में जो जगह है उसमें इंटर कल्टीवेशन भी करके, एक तो सबसे बड़ी बात है गेंदा करने से क्या होता है हमारी जो फसलों में नेमाटोड लगता है तो नेमाटोड से भी फसलों का बचाव होता है और आपको एक एडिशनल बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। अभी वर्तमान में हम अगर बात करें तो हमारे गेंदे का लगभग 100 से 120 रुपए रेट है, तो किसान भाई इसको अच्छे से अगर करेंगे, वृत्त स्तर पर करेंगे, तो अच्छा लाभ लेकर अपनी आमदनी को बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो हमारा वाटर टेबल जो गिरता जा रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में संचालित है। अगर उसको ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवाना चाह रहे हैं तो उस पर भी हमारे विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और अगर हमारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ, जमीन के पेपर लाके हमारे कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पंजीकरण करा लें, और या तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 94-68-35-90-89।
0: उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने परंपरागत खेती के साथ साथ गेंदे की खेती में भी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं कैसे मिली इन्हें गेंदे की खेती से कामयाबी।
1: वीरेंद्र पाल मौर्य बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वे पहले तो गेहूं और धान की खेती करते थे, लेकिन खेती से और अधिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने गेंदे की खेती का सहारा लिया। वर्ष 2005 में इनके गांव में उद्यान विभाग द्वारा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें इन्हें कृषि वैज्ञानिकों से गेंदे की खेती करने की सलाह मिली। तब से वे परंपरागत खेती के हवाले गेंदे की खेती कर रहे हैं और इन्हें काफी लाभ भी मिला है।
3: मैं पहले यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना होता था हमारे यहाँ पे, तो हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता था कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं, गेहूँ धान में ही लगे रहते थे सब लोग। तो इसके बाद 2005 में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हुआ उद्यान विभाग वालों का, तो उन्होंने हमें बताया कि गेंदे की फसल करो, उसमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी आपको। उसके बाद हमने वहाँ पर अप्लाई कराया, तो उसके बाद वहाँ से हमें सब्सिडी के तौर पर सामग्री मिली, तो हमने उसको लगाया था। तो दो तरह की वैरायटी मिली थी हमें, एक पीला होता और एक हमारा ये लाल गेंदा होता है। तो हमें इसमें 20,000 रुपए की लागत आई 2 एकड़ खेत में हमारे। उसके बाद 3 महीने में हमारी फसल तैयार हुई और उसमें हमें मुनाफा हुआ 2 लाख रुपए का। तब से हम साहब गेंदा कर रहे हैं।
1: मान सिंह बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सफल किसान हैं। इन्होंने 3 एकड़ खेत में गेंदे की फसल तैयार की जिसमें इन्हें 30,000 की लागत लगी। इन्होंने कड़ी मेहनत कर गेंदे की खेती में सफलता हासिल की है। गेंदे की फसल से लाभ होता देख अब मान सिंह परंपरागत खेती करना छोड़ केवल गेंदे की खेती ही करने लगे हैं। अपने खेत में प्राप्त उपज को बरेली के मंडी में जाकर अच्छे दामों पर उसे बेचते हैं। इनके अनुसार गेंदे की क्वालिटी के आधार पर बाजार में दाम भी अच्छा मिलता है।
4: पहले गेहूं धान कर रहे थे गेंदे से पहले, तो उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था और पहले सस्ता भी था गेहूं, अब जाके महंगा हो गया। पहले गेहूं धान बोई 1000 रुपए, 900 रुपए कुंटल धान था और 1200-1100 के लपेट में गेहूं था। उससे बढ़िया तो हमने कहा इससे बढ़िया गेंदा ही करते हैं, इससे ज्यादा गेहूं से ज्यादा मार्जिन, धान से ज्यादा मार्जिन गेंदे में हमें दिखा, तब जाके हमने गेंदा लगाया। और वीरेंद्र पाल मौर्या जो है हमारे भतीजे, ये 2005 से गेंदे की खेती कर रहे हैं। इनके जरिए जब मैंने इनसे बात करी है कि हमें भी गेंदा लगाना है, तो इनने कहा ठीक है आपको लगवा देंगे। फिर जाके इनने बरेली से हमारे लिए उद्यान विभाग से बीज ला के दिया और पौध भी ला के दी। पहले बीज ला के दिया, घर पे डाला, फिर जाके पौध बनाई, फिर हमने गेंदा लगाया। एक एकड़ लगाया था पिछली बार 2015 में, मतलब वो 2015 में दीपावली के टाइम में 170 से 180 रुपए किलो बिका था। टोटल मुनाफा हुआ लगभग लगभग मान लो एक एकड़ में 1.5-2 लाख रुपए का हो गया हमारा, और 30,000 से 35,000 की लागत आ गई शुरू से लेके लास्ट तक, पानी खाद पानी दवाई ववाई सब लगा के। और इसमें दो प्रकार की वैरायटी है, एक तो पीला गेंदा है, एक दूसरा है लाल। पीला वाला भी बहुत बढ़िया है, लाल वाला भी बढ़िया है, लेकिन मार्केटिंग जो उसकी है पीले वाले की ज्यादा बढ़िया है। ये अपने पूजा में ज्यादा कर इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बारात में और फंक्शन में ये गेंदे काफी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग, सबसे ज्यादा मंदिर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है।
1: अगर किसान परंपरागत फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो वो खाली पड़ी जमीन पर या सह फसली गेंदे की खेती करके काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। गेंदे के फूलों की बाजार मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खास बात तो ये है कि इसकी खेती कम जगह पर भी आसानी से की जा सकती है। किसान भाई इसकी खेती कर हर साल करीब 15 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं।
5: आज आपने अगर शाम में तुड़ाई की है तो अगले दिन आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जा सकता है, 6 डिग्री के आसपास आपको रख सकते हैं इसको, और ये कम से कम 8 से 10-12 दिन तक चल सकता है।
1: गेंदे से साल भर आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अगर इसके फूल दशहरा और दीपावली के अवसर पर उपलब्ध हो तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
5: जैसे कि बात कर रहे हैं कि फार्मर अपने आप तो ये फसल उगा ही रहे हैं, साथ साथ इसको इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है। कर्नाटका तमिलनाडु केरला में इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। और अगर हम इसकी बात की जाए तो हमारे भारतवर्ष से भी ये ल्यूटिन एक्सपोर्ट हो रहा है, और जनरली ये केरला से और तमिलनाडु से कुछ फर्म्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही हैं।
0: तो जाना आपने कि अगर हमारे किसान जो परंपरागत फसलों की खेती कर रहे हैं वो अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खाली पड़ी हुई जमीन या फिर सह फसली खेती के तौर पर गेंदे की खेती को अपना सकते हैं। बता दें साल भर इससे अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। अगर आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो सालाना 15 लाख तक की कमाई की जा सकती है, और अगर त्योहारी सीजन में आपके फूल उपलब्ध हैं तो इस मुनाफे को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गेंदे की व्यावसायिक खेती आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आप जागरूक हो गए होंगे और निश्चित तौर पर इसे अपनाएंगे और अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाएंगे।
6: तो किसान भाइयों, हमने अपनी बात हम ली गल रसिया न फूल नी खेती नी वात्यो, एतरे गेंदा न फूल नी खेती नी वात्यो। इनो फूल नो हार बने से अने हार नी बाजार मा घणी मांग से। किसान भाइयों, आज ना समय मा आपु को समय पर अगर फूल नी माला लेवा जाई तो आपु समय पर माला नी मले, केम की इनी मांग घणी ज्यादा बढ़ी गई से। जगह जगह पर हा फूल हार नो उपयोग था मंडी गयो से किसान भाइयों, अने आज ना तारीख मा इनी बाजार मा तो मांग से, अने बीजा बीजा क्षेत्रों मा पण इनी अलग अलग मांग रहे से। तो किसान भाइयों, आप ये जानियो कि गलरसिया की खेती तकनीकी तरीका देखी केवी रीते करी सकी अने केवी रीतने दवा पानी लागे, ये बड़ी बातें आज हम तुम्हारी बस मालीन आया। किसान भाइयों, कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हामली हाव आधुनिक तकनीकी देखी दूध डेरी नी व्यवसाय केवी रीते करी सकी अने इना मा अपना किसान भाई केवी रीते अगाड़ी बढ़ी सके, ये बातें आपो हामली।
7: नमस्कार, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक अत्याधुनिक डेयरी फार्म में, जिसे स्थापित किया है एक बेहद ही होनहार युवा उद्यमी ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की है, उच्च शिक्षा हासिल की है, MBA किया है और साथ ही लंदन से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने चुना अपने करियर के लिए डेयरी फार्म को। ये जानकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन उन लोगों को नहीं होगी जो ये जानते हैं कि आज की तारीख में डेयरी क्षेत्र भारत में एक उभरता हुआ क्षेत्र है। क्योंकि आप ये तो जानते ही होंगे कि दूध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, लेकिन वहीं यहाँ पर उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। ऐसे में दूध और डेयरी उत्पादों के लिए यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है। ऐसे में हमारे आज के युवा पशुपालक किस तरह से डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से सरकारी योजना का लाभ लेते हुए आप भी इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।
8: भारत के सीने में आज भी ग्रामीण संस्कृति धड़कती है और ग्रामीण संस्कृति के सीने में धड़कती है कृषि पशुपालन। खेती और पशुओं से इंसानों का नाता सदियों पुराना है, करीब 13,000 साल ईसा पूर्व का। यही वो दौर था जब जानवरों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। आज भी ये व्यवसाय खूब फल फूल रहा है और तरक्की कर रहा है। 20वीं पशुगणना बताती है कि भारत में अलग अलग जातियों के 85 करोड़ से भी अधिक पशु हैं। इनमें दुधारू गाय और भैंसों की संख्या 13,63,00,000 से ऊपर है। अगर सिर्फ गायों की बात करें तो आंकड़ा 8,13,00,000 है और यहाँ के 3.48% लोग पशु उत्पादन के काम में लगे हैं। 1951 के दौरान भारत में दूध उत्पादन करीब 1,70,00,000 टन था, जो 2013-14 में करीब 14.25 करोड़ टन हो गया। आज हम सालाना 22 करोड़ टन दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इस उत्पादन में गायों का योगदान 52% है, बाकी 48% में 45% भैंसों का और 3% हिस्सा बकरियों का है। आज पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी वृद्धि दर 6% से भी अधिक है। यही वजह है कि विश्व दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान 24% तक चला गया है। ये आंकड़े हमारे देश को दूध के मामले में पहले पायदान पर पहुंचा देते हैं। ज्यादा उत्पादन की वजह से ही हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। 1950-51 में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता महज 130 ग्राम थी, जो अब बढ़कर 444 ग्राम हो गई है। इसका मतलब हुआ कि भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता विश्व औसत से भी ऊपर है। दूध हमारी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आप शहरों में रह रहे हो या गांवों में, सफेद रंग के इस द्रव की जरूरत हर जगह है, हर किसी को है। यही जरूरत दूध उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाओं की नई उम्मीदें जगाती है और इन्हीं उम्मीदों को दूहने के लिए पशुपालकों का एक नया वर्ग सामने आ रहा है। इस वर्ग में युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। जिनके पास संसाधनों की कमी है वो सामान्य तरीकों से काम चला रहे हैं और जिनके पास संसाधन है उनकी दिलचस्पी हाईटेक विधियों में है। अब यहाँ से एक सवाल जन्म लेता है कि आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में कोई इंसान पशुपालन जैसे व्यवसाय को भला क्यों अपनाना चाहेगा। ऐसे ही सवालों को लेकर हम नोएडा के एक डेयरी फार्म जा पहुँचे। ये अत्याधुनिक फार्म लंदन से लौटे एक नौजवान दुष्यंत भाटी का है। वो MBA करने के लिए 7 समंदर पार गए थे। डेयरी फार्म का आइडिया वहीं से आया।
7: डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बहुत से युवा आजकल इस क्षेत्र में आ रहे हैं। ऐसे ही एक सफल डेयरी उद्यमी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, दुष्यंत भाटी जी। आइए उनके अनुभव के बारे में यहाँ पर जानते हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में जब हमने जाना तो बहुत ही खास बात ये हमें पता चली है कि बहुत ही अच्छी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी आप उच्च शिक्षा हासिल करके आए हैं, लंदन में आपने पढ़ाई की है। हम जानना चाहेंगे कि इसके बाद कैसे ख्याल आया कि डेयरी क्षेत्र से जुड़ा जाए और इसे एक उद्यम की तरह शुरू किया जाए।
9: जी मैम नमस्कार, आज हमारे फार्म पे आने के लिए आपका बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया, एजुकेशन मेरी बेसिक जो प्राइमरी हुई है वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हुई है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ इंडिया में अपने अंडर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी लंदन से MBA से। तो वहाँ पर मैंने जितना भी अपने जितने डेयरी फार्म्स थे, जो इस तरीके के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की जो फैक्ट्रीज थी, मैंने उनको स्टडी किया। उसके बाद मैंने देखा करके कि भाई अपने इंडिया में भी इस तरीके का एक लेवल हमें लाना चाहिए।
8: दुष्यंत ने लंदन में डेयरी फार्म की स्टडी जरूर की थी, लेकिन एक MBA छात्र के लिए ये नया क्षेत्र था। यही वजह है कि डेयरी फार्म को इन्होंने भविष्य की योजनाओं का हिस्सा बनाया, प्राथमिकता डेवलपर बनने की रखी, फिर इनका

0: गायों का बहुत ख्याल रखा गया है।
1: अत्याधुनिक तकनीक से डेयरी फार्म स्थापित करने के बाद भी पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन किया जाए। ऐसे में दुष्यंत भाटी जी किस तरह से अपने फार्म में पशुओं के स्वास्थ्य और उनके आहार का ध्यान रखते हैं।
0: यहाँ पर गाय पूरी तरह आजाद है। फार्म में ना तो आपको खूंटा नजर आएगा, ना गायों के गले में रस्सी। इनका जब मन करेगा खाना खाएंगी, जब मन करेगा पानी पिएंगी। गाय सफाई को पसंद करती है, इसलिए फार्म में आपको कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी। अभी गर्मी का मौसम है तो शावर और पंखे चल रहे हैं। अक्टूबर में इन्हें बंद करना होगा और सर्दियां आने पर गौशाला में पर्दे लटकाने होंगे। दुष्यंत का मानना है कि बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को शारीरिक ही नहीं मानसिक आराम भी चाहिए।
2: गले के टैग्स हैं, जिससे हमें क्या मिलता है कि उनका डेटा हमें मिलता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कि उनका मास्टिकेशन कितना है, मास्टिकेशन मींस जुगाली कितनी है और दूध कितना दिया उन्होंने, उनका टेम्परेचर लेवल क्या है, उनकी मूवमेंट कितनी हुई है, कितनी देर उन्होंने फूड का इंटेक किया है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो हमें कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं, जिससे कि हमें डेटा प्रोवाइड होता है कि हम देख सकें कि भाई गाय को कितना उसने पूरे दिन में अपनी मूवमेंट करी है, कितना हैबिट्स में खाना खाया है, और उससे हमें मिल्क प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है कि हम उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना हमें दूध उसने प्रोड्यूस करके दिया है। और उसी के साथ लूज हाउसिंग कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सारा, जिसमें कि गाय को बांधा नहीं जाता है और उसमें उसको खाना 24 घंटे के लिए दिया जाता है। दो बार हम लोग फीडिंग करते हैं, मिल्क अनलिमिटेड, वाटर अनलिमिटेड है।
0: हर गाय के आहार की गणना की जाती है, उसके खान पान का निर्धारण करते समय ये भी देखा जाता है कि उसका वजन कितना है, वो किस स्टेज में है और दूध कितना दे रही है। हर 15वें दिन डाइट चार्ट बदल दिया जाता है।
1: आपसे मैं पशु के आहार के बारे में और विस्तार से जानना चाहूंगी कि किस किस तरह का आहार आप उनको देते हैं और क्या उसमें भी मौसम के अनुसार तब्दीली करते हैं।
2: जो आहार बनता है पशु का वो चार चीजों से बनता है, जिसमें कि हम लोग हरा चारा लेते हैं, भूस लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड डाइट होती है, और साइलेज हम लोग प्राइमरी इन चार चीजों पर रखते हैं, बाकी एडिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह और होते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द काउ। तो उसके अंदर भी हम मेंटेन करते हैं कि भाई कितना साइलेज देना है, कितना भूस देना है, कितनी फीड देनी है, फीड की जो अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको भी हम एज पर द मौसम चेंज करते रहते हैं।
0: कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। खेती से पशुओं को चारा मिलता है और पशुओं से फसलों को खाद। दुष्यंत के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है, मगर इतनी भी नहीं कि 100 गायों का पेट भर सके। चारे के लिए उन्हें दूसरे किसानों से संपर्क करना होता है। इस तरह उनका डेयरी फार्म आसपास के किसानों के लिए कमाई का जरिया बन रहा है।
2: हरा चारा हम लोग किसानों से उगवा लेते हैं, अपने पास भी जमीन है उसमें भी हम उगवाते हैं, और मक्का हम लोग बाहर से प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरीके के इनके अलग अलग डाइट्स होती हैं जो हम मौसम के हिसाब से उससे फीड बनवाते हैं। कुछ बाहर की कंपनीज हैं उनसे भी ले लेते हैं, हम लोग अपना भी फीड प्लांट हमारा लगा हुआ है, हम उसे भी बनाते हैं, और उसमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द काउ उसके साथ हम लोग जितने भी तरीके के 28 तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम लोग उसमें फीड में डाल के उसको फीड को तैयार करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग इन गायों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में वो फीड डालते हैं, उसके साथ ही पूरा TMR मेंटेन करते हैं। TMR वो चीज़ है जो टोटल मिक्स राशन है, जिसमें कि पूरा एक बैलेंस्ड डाइट दी जाती है थ्रू आउट द ईयर एज पर द वेदर। उसमें ये जितना भी हमें कंसंट्रेशन डालना है, कितना हमें विटामिंस मिनरल्स उसका हम लोग ध्यान रखते हैं, जो अपनी देसी पदार्थ हैं जैसे हल्दी है, शतावरी है, वो भी हम समय समय पर डालते हैं। जैसे कोई गाय ग्याबन है उसके साथ हम लोग उसमें क्या क्या चीजें डालते हैं, वो इस तरीके के जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
0: दुष्यंत MBA है, इसलिए वो खुद ही मार्केटिंग भी संभाल रहे हैं और कांच की बोतलों में दूध पैक करके बेच रहे हैं। दूध के अलावा दही, पनीर, घी, छाछ और मावा सब कुछ यहाँ बनता है।
1: इन प्रोडक्ट्स के बारे में अब हमें बताएं कि दूध तो है सबसे प्राथमिक जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो मिलता है हमें, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से उत्पाद हैं आपके?
2: दूध के साथ हम लोगों ने फिर पनीर बनाया, फिर घी बनाया, और अब हम लोग स्वीट्स में भी हैं और रेस्टोरेंट में भी आ चुके हैं। वो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खुल गया है लास्ट ईयर, और अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क एंड घी, पनीर, बटर मिल्क, छाछ, ये सारी चीजें हम लोग लेकर के आ रहे हैं बाय नेक्स्ट ऑफ द मंथ।
0: शुरुआत से ही ये डेयरी फार्म अच्छा कारोबार कर रहा है। कोरोना महामारी के समय बिजनेस थोड़ा कमजोर जरूर हुआ था, लेकिन अब फिर से पटरी पर लौट आया है। अच्छी कमाई की वजह से ही दुष्यंत दूसरे किसानों और नौजवानों को भी डेयरी

0: फार्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो अब तक 40 गांवों के किसानों को अपने साथ जोड़ चुके हैं और उन्हें डेयरी फार्म विकसित करने के तरीके बता रहे हैं।
1: कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डेयरी फार्म से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें।

कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ने त्यो भूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त रह से भूमि नो जहाँ पीएच मान 5 थी लगाड़ी ने 6 अने असल जल निकासी वाली भूमि अदरक ने उपज हारू सबसे असल मानी जाए से। खेतर की तैयारी तो किसान साथियों मार्च अने अप्रैल मा खेतर की गहरी जुताई मिट्टी पलटवा वाला हाल थी करवानी बाद मा खेतर ने खुली धूप हारू सोड़ी नाखवानू। महीना महीना मा डिस्क हैरो या रोटावेटर थी जुताई करीने मिट्टी ने भुरभुरी बनाई लेवानी। आखरी जुताई ना समय पर उर्वरकों ने अनुसंचित मात्रा नो प्रयोग करवो जोई अने शेष उर्वरकों ने खड़ी फसल मा आलवा हारू वसाड़ी लेवानू। तो किसान साथियों बीज नी मात्रा बीज हारू अदरक ना कंदो नो चयन 6-8 महीना नी अवधि वाली फसल मा पौधा ने चिन्हित करीने कापी लेवो जोई। असली प्रकंद ना 2.5 थी लगाड़ी ने 5 सेंटीमीटर लांबा कंद जीहुनो वजन 20-25 ग्राम तीन मा कम थी कम 3 गांठियो रेवियो जोई। प्रवर्धन हारू उपयोग मा आपु इनी गांठियो ने ले सकीम। किसान साथियों बुवाई नो समय अदरक नी बुवाई दक्षिण भारत मा मानसून फसल ना रूप मा अप्रैल अने मई मा करी जाए से त्या डिसेम्बर महीना मा पाकिन तैयार थाई जाए से। जबकि उत्तर भारत मा अदरक अने शुष्क क्षेत्र एक फसल से त्या अप्रैल थी जून महीना तक बुवाई करी जाए सके से। सबथी असल समय जो रहे से किसान भाइयों 15 मई थी लगाड़ी ने 30 मई तक अने 15 जून ने बाद मा बुवाई करवा पर कंद हड़वा लागे से। तो किसान साथियों पहाड़ी क्षेत्र मा 15 मार्च ने आसपास मा बुवाई करी जावा वाली अदरक मा सबथी असल उत्पादन मळे से। बुवाई नी विधि अने बीज अने क्यारी नो अंतराल तो किसान साथियों प्रकंदो ने 40 सेंटीमीटर ना अंतराल मा ओरवू जोई। मेड़िया कूड़ा विधि थी बुवाई करवी जोई अने प्रकंदो ने 5 सेंटीमीटर नी गहराई पर ओरवू जोई। बाद मा असल हड़ेलू गोबर नू खातर अने मिट्टी थी ढाकी देवू जोई। अगर रोपण करवो है तो कतार थी कतार 30 सेंटीमीटर अने पौधा थी पौधा नी दूरी 20 सेंटीमीटर तक राखवी जोई। बीज नो उपचार तो किसान भाइयों प्रकंदो ने ओरवाथू पहलू मेनकोजेब मेटालेक्सल या कार्बन डाइजिम नी 3 ग्राम मात्रा ने प्रति लीटर पानी ना हिसाब थी घोली ने प्रकंदो ने 30 मिनट तक डुबाड़ी ने राखू जाई। सीहला नो प्रभाव तो किसान साथियों अदरक ने हल्की सीहला मा खुला मा ओरी गई अदरक ने ओरी गई अदरक थी 25% ज्यादा उपज आले से अने कंदोनी गुणवत्ता में उचित बढ़ोतरी पाई जाए से। पलवार तो किसान साथियों अदरक नी फसल में पलवार बिसाड़वानु अने घणु ही लाभदायक रहेशे। रोपवाना टाइम पर तिनाने भूमि

0: किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर नाखवाथी उपज असल मळे छे। उन्नतशील प्रजातिओना नामो, तो किसान साथीओ उन्नतशील प्रजातिओ बेला अदा, मोरन अदा, जाति अदा, काशी अने नाना आकारना कंद अने औषधि उपयोग हारू प्रयुक्त असल रहेशे। केकी बाजार स्थानीय नागासिंह ज्यादा रेशा अने सुगंध हारू प्रयुक्त रहेशे। अने विची नाड़िया किस्मियों सोठ हुकेलो अदरक हारू भी मेसी किस्म ज्यादा उपज हारू असल रहेशे। तो किसान साथियों खुदाई अदरक नी खुदाई लगभग 8-9 महीना रोपवाना बाद मां मळी जाय छे अने पायडा धीरे धीरे पीळा पड़ी हूकवा लागे अने एवा टाइम पर अदरक नी खुदाई करवी जोईए। भंडारण, तो किसान साथियों भंडारण हारू जेर अदरक कड़ी अने कम कड़वाहट कम रेशा वाली ओहे तो एवी अवस्था में परिपक्वाने बाद मां असल थई जाय छे। तो किसान साथियों उपज ताजा हरा अदरक ना रूप में 100-150 क्विंटल प्रति हेक्टर तक अदरक नो उत्पादन किसान भाई ने मिली जाए से। तो किसान भाइयों मैं हमने तमने अदरक ना बीज उत्पादन अने लगाड़वानी तरकीब ना बारा में अने कई एवी उत्पादन तकनीक अने भूमि नो चुनाव खेतर नी तैयारी अने बीज नी मात्रा अने बुवाई नो समय अने बुवाईनी विधि अने बीज उपचार करवाना तरीका अने भंडारण थी लगाड़ी रहती उपज तक में तमने जानकारी हामळावी। तो किसान साथियों भी खेतीवाड़ी नी असल असल जानकारी हामळवा हारू तमो हामळता रहेजो रेडियो कंटाबी 90.8 FM छावानी आवाज।
1: હું છે આરજે રાકેશ
2: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર,
1: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી, આપડા છાપવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM છાપવાની આવાજ પર।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं। और आज जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर हमारे साथ हैं, वो हैं राघवेंद्र देशमुख साहब। बाकी हम राघवेंद्र साहब से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें बताएं ना, कहाँ हैं वो, क्या करते हैं वो, कौन है वो। तो राघवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लीजिए बात कीजिए आपके फैन से।
1: नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार सभी को। मेरा नाम राघवेंद्र देशमुख है। समीर भाई और रेडियो SN, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर। मैं बेंगलोर का निवासी हूँ। लगभग 28 साल मैंने टेक इंडस्ट्री यानी IT इंडस्ट्री में काम किया था। 2 साल पहले मैंने उससे संन्यास ले लिया है, या सेमी संन्यास या सेमी रिटायरमेंट कह सकते हैं, वो ले लिया है। फिलहाल मैं एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और आज का जो हॉट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वो पढ़ाता हूँ। साथ में सिंगिंग इज अ बिग हॉबी ऑफ माइन। गाने गाता भी हूँ, गाने सुनता भी हूँ, क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, और आजकल फुटबॉल का भी फीवर चढ़ा हुआ है, तो मैं फुटबॉल भी फीफा वर्ल्ड कप के जरिए देख रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर समीर भाई, एंड थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर अगेन।
0: थैंक यू सो मच राघवेंद्र भाई। तो दोस्तों, ये हैं राघवेंद्र जी। तो क्या करते हैं, कौन हैं, कहाँ हैं, वो उन्होंने बताया। और इनके म्यूजिक का भी आनंद उठाने के लिए लीजिए, पेश करता हूँ ये गीत। इनको सुनिए और तय कीजिए कि और क्या जानना चाहेंगे हम राघवेंद्र जी के बारे में।

0: बहुत खूब राघवेंद्र जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत के बारे में ही बताइए, आपने कहा कि आपको संगीत का शौक है, यू आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग। सो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछना चाहेगा कि किस तरीके का संगीत आप पसंद करते हैं, गाने में, दूसरा सुनने में, मतलब कहने का मतलब है आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं और किस तरीके के गीत आप गाना पसंद करते हैं।
1: बहुत अच्छा। तो गीत जो मैं सुनना पसंद करता हूं वो उसमें कोई सीमा नहीं है। मैं तमाम हिंदी के गाने सुनता हूं, कन्नड़ा के गाने सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। पहले पहले मेरा इंटरेस्ट हुआ करता था सिंगर बेस्ड, मतलब किशोर दा गा रहे हैं, रफी साहब गा रहे हैं, बाला सुब्रमण्यम साहब गा रहे हैं, आशाताई गा रही है। लेकिन बाद में जो 80 और 90 के दशक के कई सारे जो सिंगर्स आए तो उन्हें मैं सुनता गया और अलग सा एक संगीत का मजा आ रहा था उस समय। जो मैं गाना पसंद करता हूं वो है गुरुदेव किशोरदा। मतलब उनके गानों के बिना जिंदगी अधूरा लगता है मुझे। तो रोज तो मैं किशोरदा के एक दो गाने सुनता भी हूं और गुनगुनाता भी हूं। साथ में मैं एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का जो कन्नड़ा कन्नड़ा के गीत हैं या फिर हिंदी के उनके कई सारे हिट्स हैं वो मैं सुनता हूं। तो मैं थोड़े पुराने पुराने कह सकते हैं क्योंकि 70-80 के दशक के गाने या फिर 90 के जो नदीम श्रवण जतिन ललित वाले स्टाइल के जो गाने हैं वो मैं सुनना पसंद करता हूं। बाकी इंस्ट्रूमेंटल में थोड़ा अभिरुचि है क्योंकि उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो जो कंटिन्यूसली बजते हैं वो कानों में लगा करके यदि काम कर रहा हूं या फिर नींद नहीं आ रही है तो वो अगर सुनता हूं तो अच्छा लगता है मुझे।
0: और किस तरह के गीत आप गाना पसंद करते हैं?
1: किस तरह के गीत? किशोरदा के बहुत सारे किशोरदा के ऐसे गाने हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आता है और मैं उन्हें गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। जब भी कोई मुझसे बोलता है कि यार थोड़ा गाना गा दे तो मैं मुसाफिर हूँ यारो पिक कर लेता हूँ, कुछ ऐसे ही किशोरदा के गाने मैं पिक करके मैं गाना शुरू कर देता हूँ। कन्नड़ा में यदि कोई बोलता है तो कुछ कहा तो एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का मैं गाना गा देता हूँ। वो होता है कि वो जो टॉप ऑफ द माइंड गाने होते हैं ना वो ऐसे गाने मैं बहुत ही पसंद करता हूँ।
0: मतलब आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि आप सिर्फ किशोर कुमार जी के गाने गाते हैं। अगर इसको फर्दर कैटेगराइज करते हुए कहें कि आप रोमांटिक गाते हैं, सैड गाते हैं, अच्छे हंसने वाले गाते हैं, मोटिवेशनल गाते हैं, मेलोडी बेस्ड गाते हैं, म्यूजिक बेस्ड गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ किशोर
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि किशोरदा अलग अलग मूड के गाने मतलब इतने सरलता से गा चुके हैं तो हमें कैटेगराइज करने का कोई हक नहीं बनता एज अ सिंगर एज अ लिसनर, है ना। तो सैड मैड ग्लैड ऐसा एक थीम अगर हम रख दे तो किशोरदा के सारे गाने उसमें फिट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कोई सब कैटेगराइज नहीं करता, जो दिल को लगा मन को लगा कि आज वो गाना गाना है तो गा दिया आज।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक बात है, किसी भी गायक को ऐसा ही होना चाहिए, जब जिस वक्त जो मूड हो उसको गाएं और अपने को आनंद लें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इन गीतों का हम आनंद उठाएं जो राघवेंद्र जी ने हमारे लिए रिकॉर्ड किए।

0: बहुत खूब राघवेंद्र भाई, बहुत खूब। चलिए, आपने जब आप अपने बारे में बता रहे थे तो आपने कहा कि आजकल का जो दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आज मतलब आप जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं आप। तो मैं तो कोई मतलब IT इंडस्ट्री वो नहीं हूँ, टेक्नीशियन या IT ग्रेजुएट नहीं हूँ, मुझे IT के बारे में कुछ नहीं पता है। और बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको ज़रूर पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे सुनकर या मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रूटीन लेमैन के लिए, मैं एक लेमैन हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मायने है ChatGPT पे या Gemini पे जाके पोस्टर बनाना। मैं ChatGPT पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन मोशन पूछना तो स्टुपिडिटी है। मैं उसको बोलता हूँ कि भैया मेरे को इस तरीके का पोस्टर चाहिए, उसमें ये रंग डाल देना, उसमें ये इमोशंस डाल देना, ये लिख देना। दैट इज द बेस्ट यूसेज ऑफ AI फॉर मी। तो आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है देशमुख भाई, आगे के 10 सालों के बाद हमारे जैसे लेमैन खत्म हो जाएंगे और कुछ जो नई जनरेशन आएगी वो AI को कुछ और अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही होगी क्या? सो व्हाट इज द फ्यूचर यूसेज ऑफ AI, माय रियल क्वेश्चन इज।
1: जी, AI आमतौर पे कई सारे हम जैसे लोग भी हैं जो उसको यूज करते हैं या पढ़ाते हैं। हमने भी कई बार पोस्टर ही बनाया है ChatGPT, Gemini या बहुत सारे ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जिन्हें कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं। लेकिन आजकल जो चल रहा है, जो मेरा नजरिया है और जो 30 साल मैंने टेक इंडस्ट्री में गुजारा है, उसको देखते हुए मैं बता सकता हूं कि AI जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे फोन्स में भी AI जमा हुआ है, हमारा हम जो सेल्फी वगैरह लेते हैं उसको भी वो ठीक कर देता है, हमें तो हीरो जैसा दिखा भी देता है वो कभी कभी, है ना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो उसका इस्तेमाल होने लग गया है। हम आउटडेटेड नहीं होंगे बिकॉज ह्यूमन इंट्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गो हैंड इन हैंड। आज के तारीख में लोग, बड़े लोग कहते हैं टेक इंडस्ट्री के काम चला जाएगा आधे इत्यादि कुछ।

0: नहीं होगा, पीपल विल पिवट, हम लोग कुछ अलग दिशा में कुछ और करने लगेंगे, लेकिन एआई को हमारी बात सुननी होगी बिकॉज ह्यूमन इंट्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑलवेज गो टुगेदर, ये मेरा मानना है, दावा करता हूं मैं कि ह्यूमन इंट्यूशन विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन.
1: ऑल राइट, दो ऑफ कोर्स आई हैव अ क्वेश्चन हियर, लेकिन ये बातचीत लंबी हो जाएगी. मुझे तो ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज बढ़ती है, बढ़ती जा रही है, और हमारा इंट्यूशन कम पर कम होते जा रहे हैं बिकॉज हम और ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई के ऊपर. तो हमने सोचना बंद कर दिया है, हम इंट्यूटिव हैं ही नहीं कि हम पोस्टर बनाए तो खुद अपने हाथों से बनाना हमने बंद कर दिया है. चैट जीपीटी को बोल देते वो बना देता है. सो वेयर इज द इंट्यूशन इज गोइंग. सो दो ऑफ कोर्स ये लंबा टॉपिक हो जाएगा बॉस, कि हमारी इंट्यूशन आप जैसे कह रहे हो तो वो साथ में साथ मेरे को तो नहीं लग रहा. एनीवेज अभी हम लोग संगीत के इस प्रोग्राम में हैं, तो चलिए जब तक हमारा इंट्यूशन काम कर रहा है, जब तक हमारा टैलेंट हमारे साथ है, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राघवेंद्र देशमुख जी की आवाज में गाने ना लग जाए, तब तक राघवेंद्र जी की ओरिजिनल आवाज में ये प्यारे से गीत सुने. बाकी फ्यूचर में देखेंगे दोस्तों. आइए मजे लें इन गीतों का.

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राघवेंद्र भाई, दूसरी बात आपने कही थी कि आपको फिल्मों का बहुत शौक है, एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट, क्योंकि फिल्मों का शौक मुझे भी बहुत ज्यादा है। वो बात थोड़ी सी अलग है कि मुझे आई मीन आई वुड लाइक टू सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर सेइंग दिस कि मुझे हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती हैं। बॉलीवुड मूवीज मुझे बहुत ज्यादा जमती नहीं है, क्योंकि 90% मूवीज, जो मेरा मानना है, वो या तो स्टार सेंट्रिक होती हैं कि जी सलमान खान के ऊपर बन रही है मूवी, सो मूवी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट्स कंटेंट, इट्स म्यूजिक, इट्स स्टोरी। म्यूजिक मूवीज एंटायरली इज सपोज टू बी अबाउट सलमान खान, खत्म। तो स्टार सेंट्रिक होती हैं, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, मूवी क्या है उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इस वजह से मैं तो खैर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल मूवीज देखने की कोशिश करता हूं, बट बात आपके पसंद की हो रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज एक्चुअली डू यू लाइक, क्योंकि आपने कहा आप बहुत सारी मूवीज देखते हो, सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक? रोमांटिक, एक्शन, सस्पेंस, सैड, मैड, ग्लैड, वो जो आपने बीच में कहा बड़ा अच्छा कहा था। सो व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक?
1: तो मैं सैड तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि फिल्में एक जरिया है अपने आप को अनवाइंड करने का, ऐसा मेरा मानना है। तो सैड मूवीज क्यों देखना, दर्द तो ऑलरेडी है हमारे इर्द गिर्द, है ना। तो ग्लैड मूवीज हो, एक्शन मूवीज हो, जिसमें ज्यादा दिमाग को खर्च करने की जरूरत ना हो और जिसमें अच्छे गाने हो, तो वो ऐसे फिल्में मैं देखता हूँ। मैं शोले फिल्म का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मतलब अनगिनत बार शायद देख चुका हूँ शोले, क्योंकि वो फिल्म मुझे, हालांकि बच्चन साहब तब स्टार बने नहीं थे, लेकिन उस फिल्म में कई सारे ऐसे स्टार्स हैं, और जो बहुत बड़ा स्टार उस फिल्म का है वो है कहानी उस फिल्म की उस समय के लिए। तो वैसे फिल्म मैं पसंद करता हूँ जिसमें ज्यादा दिमाग को जोर ना देना पड़े, हंसे, देखे, निकल जाए, याद करे उन गानों को,
0: ऑलराइट,
1: उन फिल्मों को,
0: ऑलराइट। तो फिर भी अगर बिल्कुल ऑन द लाइटर साइड पार्ट ऑफ इट, अगर मैं यूं ही पूछने की कोशिश करूं आपसे कि अपनी तीन चार फेवरेट मूवीज के नाम बताइए, आपने एक तो बताई दिया शोले।
1: जी, तो शोले है, नमक हलाल है, तो वो दोनों तो ऑल टाइम फेवरेट्स रहेंगे मेरे लिए। और एक है दिल चाहता है, जो साल 2000 में बना था, मुझे अहेड ऑफ टाइम्स लगा, वो बिल्कुल ही परफेक्ट फिल्म लगा मुझे वो। और द गुड द बैड एंड द अगली, जो बहुत पुरानी काउबॉय फिल्म है हॉलीवुड की, तो मुझे ये तीन चार फिल्में जो हैं वो बहुत ही पसंद है। और इनमें से तीन हिंदी फिल्मों के नाम जो मैंने लिए, शायद उनके डायलॉग्स भी कभी कभी मैं ऐसे ही बोल देता हूँ।
0: जी जी जी जी, आई गेट इट। बिल्कुल अपने टाइम की जिनको कहना चाहिए स्तंभ, मतलब वो क्या टर्म मुझे यूज करना चाहिए, बिल्कुल पैरागॉन, एकदम ऐसी फिल्में जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं आया कभी तक। स्पेसिफिकली आपने मेरी ही पसंद की एक मूवी का नाम लिया, द गुड द बैड अगली, अमेजिंगली ब्यूटीफुल मूवी, 3 घंटे की वो मूवी, मैं आज भी कई बार देखने की कोशिश करता हूँ, बहुत खूब। तो दोस्तों आप विचार कीजिए कि कौन सी मूवीज आपको पसंद आती हैं, और हमें बताइए अगर पॉसिबल हो कि आपको कौन सी मूवीज अच्छी लगती हैं और क्यों। आइए आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं, राघवेंद्र जी की ही आवाज में जो उन्होंने गाए।

0: बहुत खूब राघवेंद्र भाई, अगर आप इजाज़त दें और मुझे माफ़ करें, मैं एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बात करना चाह रहा हूं। मेरे दिमाग में कूद रहा है, मैं उसको चुप नहीं करा पा रहा हूं, तो पूछ लूं अगर आप कहें तो।
1: जी बिल्कुल सर।
0: आपने कहा कि आप वो स्पोर्ट देखना पसंद करते हैं जो इंडिया का पैशन है।
1: जी,
0: दैट इज क्रिकेट।
1: जी,
0: आपको नहीं लगता राघवेंद्र भाई कि हम लोगों को क्रिकेट को दरअसल अपना नेशनल स्पोर्ट्स घोषित कर देना चाहिए? हॉकी को खामाखा में रखा हुआ है देखने के लिए, जब 99% दुनिया इंडिया और वही अंग्रेजों के दिए हुए खेल को ही देखना पसंद करती है, तो उसे हम नेशनल स्पोर्ट क्यों नहीं घोषित कर देते? और हॉकी में ऐसा क्या नहीं है जो इंटरेस्ट हमको क्रिकेट में आता है वो हॉकी में क्यों नहीं आता? सो देयर आर टू क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड।
1: जी, तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं है मेरे हिसाब से। जो स्पोर्ट्स के प्रेमी है, मैं हॉकी भी फॉलो कर रहा हूँ। हाल ही में इंडिया ने बड़े बड़े टीम्स को भी डिफीट किया है, हराया है हॉकी में, तो ऐसा है कि इंडिया अच्छा कर रहा है। अब क्रिकेट को ये बनाना चाहिए नेशनल स्पोर्ट या नहीं, ये तो मैं मानता नहीं हूं कि कोई नेशनल एक स्पोर्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा कवरेज मिलता है, स्टार्स बन जाते हैं ओवरनाइट। वही हम हॉकी या अभी अन्य स्पोर्ट्स को देखें, अभी एक एथलेटिक मीट भी हो रहा है कहीं शायद उड़ीसा में, तो वहां कई सारे ऐसे नेशनल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं आज के तारीख में, उसका ज्यादा कवरेज होता नहीं है, ना नेशनल मीडिया पे होता है ना सोशल मीडिया पे, तो एक संतुलन आज के तारीख में नहीं है, वो मेरा मानना है। तो अगर कोई ऐसा एक्शन ले के 3-4 और अधिक स्पोर्ट को ऊपर ले आए और क्रिकेट को स्पोर्ट से हटा करके वो एंटरटेनमेंट कर दे, तो शायद बैलेंस आ जाएगा, मेरा ये मानना है।
0: बट पॉइंट ये है ना मेरे भाई, कौन करेगा ये? आप किसको करने के लिए बोल रहे हो उसको? आप, मैं और आप ही तो हैं जो कुछ करेंगे। इफ एट ऑल वी स्टॉप वॉचिंग क्रिकेट, क्रिकेट विल गो डाउन। इफ एट ऑल वी स्टार्ट वॉचिंग ऑल दीज एथलेटिक इवेंट्स, दोज विल कम अप। हम लगातार अपने टीवी को ट्यून ही करते हैं क्रिकेट के लिए, तो बाकी तो मरेंगे ही मरेंगे। अब किसको आप हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा दे कि वो उसको बंद कर दे, वो उसको चालू कर दे?
1: हमारा सब, हम सबको ऐसे मिल करके करना चाहिए। ये एक डिपार्टमेंट का या एक संस्था का वो इंचार्ज नहीं है, ये That's हम right. सबको मिल करके बनाना चाहिए,
0: That's
1: है ना
0: right.
1: तो कई सारे लोग हैं जो

0: ओलंपिक मूवमेंट को, मेरे दोस्तों के सर्कल में दो लोग हैं जो आर्चरी वगैरह इनको सपोर्ट करते हैं, जो ओलंपिक मूवमेंट है उनको उसमें सपोर्ट करते हैं, यानी पैसा देते हैं उनको, और उनके कोचिंग के लिए सहूलियत हो उसके लिए वो मदद करते हैं और एम्पलीफाई करते हैं सोशल मीडिया पे इन सब चीजों को, तो वो हो रहा है। लेकिन बैलेंस कब तक आएगा ये मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है।
1: जी बिल्कुल सही कहा राघवेंद्र भाई, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि ये हमारा क्रिकेट हमारे दिल के बड़ा नज़दीक है, हम उसके बारे में कुछ भी गलत बात सुनना पसंद नहीं करते। सचिन तेंदुलकर हमारे लिए भगवान हैं, तो वी कैन नॉट लिसन एनी थिंग यू नो विच इज़ नॉट ओके विद क्रिकेट। चलिए जाने देते हैं दोस्तों, विचार कीजिए, आप लोग विचार कीजिए कि क्यों हमारा देश ओलंपिक्स में या किसी में जाकर मेडल नहीं ला पाता, क्योंकि शायद हम क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, मे बी। चलिए विचार कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या ठीक हो सकता है। तब तक राघवेंद्र जी के ही गाए हुए इन गीतों का तो आनंद उठाएं। सो लेट्स मेक इट अ बैलेंस, लेट्स लाइक म्यूजिक, लेट्स लव म्यूजिक एंड एंजॉय म्यूजिक।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गायकी, चारों तरफ से मजा आ गया गायकी सुन के। तो राघवेंद्र भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले संगीत प्रेमी, कम से कम जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके फैन बने हैं, आपके गीतों को उन्होंने निहारा है, बहुत प्यार से सुना है, बहुत इंजॉय किया है, उन सब के लिए क्या कहना चाहोगे आप? कुछ मैसेज है आपके पास, कोई भी बात दिल में है जो हमारे दिल तक पहुंचे, कह डालिए।
1: तो ये गूगली क्वेश्चन था और यहां पर भी मैं क्रिकेट लेके आ गया, लेकिन सोचते सोचते म्यूजिक मेरे लिए एक ऐसा जरिया है और मैं जानता हूं कि अनगिनत ऐसे लोग हैं हमारे साथ में जो म्यूजिक के बिना जिंदगी अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। तो मेरे लिए वो है स्ट्रेस बस्टर, जिसे कह सकते हैं, या मूड मेकर। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ जब मैं उदास हूं तो तब मैं म्यूजिक सुनता हूं, नहीं, कि आई एम ऑलवेज इन टू म्यूजिक, मैं सुनता ही रहता हूँ गाड़ी चलाते वक्त, या फिर मैं अकेले बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ करता रहता हूँ। तो म्यूजिक एक जरिया है जिससे हम सब लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ बैंगलोर में जिनसे मैं संगीत के जरिए मिला हूँ, जो हॉबी ग्रुप्स हैं उनके साथ मैं मिलता हूँ, तो सीखने का बहुत मुझे मौका मिला है उन लोगों से। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि म्यूजिक इज सेकेंड टू गॉड मेरे लिए और बहुत सारे हम लोगों के लिए। तो हमें सुनते रहना चाहिए म्यूजिक, हमें बनाते रहना चाहिए म्यूजिक, और अपने जीवन में कई सारे मूड्स होते हैं, उसके हिसाब से आप अपने पसंदीदा गाने सुने, उन्हें याद करें, गुनगुनाए, एंड डोंट वरी। मैं तो कभी चिंता नहीं करता हूं कि ये सुर ऐसे बैठा कि वैसे बैठा। एप्स हैं जो बताते हैं कि ये आपका पिच ऊपर नीचे चला गया आधे इत्यादि, लेकिन आई एंजॉय द सॉन्ग, आई एंजॉय द म्यूजिक। तो आई वुड ऑल्सो विश दैट ऑल ऑफ अस कम टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल थिंग कॉल्ड म्यूजिक।
0: ब्यूटिफुल, क्या बात कही, मजा आ गया बॉस। कि म्यूजिक को एंजॉय कीजिए किसी भी तरीके के, क्योंकि प्रकृति ने बनाया है म्यूजिक, वो हमारे साथ तो सिंक्रोनाइज करेगा ही, रिलेट करेगा ही, रेजोनेट करेगा ही। राघवेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे बात करके दिल खुश हो गया, खुल गया। थैंक यू।
1: थैंक यू समीर भाई, थैंक यू रेडियो SN, और थैंक यू तमाम जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब रेडियो SN। हम सभी लोगों को साथ मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इस मौके से क्या कह सकते, निहारने के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

0: शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।
1: देखिए भाई, माफ करने से गुस्से, दर्द और दुख की वो श्रृंखला, वो सीरीज टूट जाती है जो हमारी डेवलपमेंट में, हमारे विकास में बाधक बनी हुई होती है। माफ कर दीजिए, हमें जिंदगी की ओर ले चलिए। माफ करने से ना हम आजाद हो जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं और आगे के लिए बेहतर चुनाव कर पाते हैं। इसलिए हम गुस्से और बदलाव की भावना से सुलगते रहते हैं, लेकिन दूसरों को माफ नहीं करते। भाई, दूसरों को माफ कर देना अपने आप को आजाद करना होता है। इससे दूसरा आजाद नहीं होता, हम मुक्त हो जाते हैं। कई बार कमजोर और फीका, तो कई दफा मजबूत और रोशनी से लबालब चांद समझता है मनुष्य होने का मतलब। जीवन यात्रा में आए दिन तमाम तरह की उठापटक होती ही रहती है, या कुछ समय के लिए कदम पीछे कर लेना हमेशा मंजिल से दूर नहीं करता हमें। लंबी यात्राओं में देखिए, हर पड़ाव जरूरी होता है। गति का महत्व है तो ठहराव का भी उतना ही महत्व है। इसलिए रुकिए, सोच लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। सपनों के सच होने की संभावना ही जीवन को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसलिए उम्मीदों का होना, जिंदगी की धूप में घनी छाया का होना, जिसके साए में बढ़ते रहना आसान होता है। अगर कुछ देखिए होने की, बदलने की उम्मीद ही ना हो, तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। कुछ करने का जज्बा उम्मीद के सहारे ही जोर पकड़ता है। हमारा भविष्य हमारी उम्मीदों से आकार लेता है। इसलिए उम्मीद हमेशा बनाए रखें, लेकिन ख्याल रखें, उम्मीदों से बंधना भी बहुत खतरनाक होता है।

मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

लोगों के पीछे दौड़ना, हर चीज को ठीक करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए जी। यह तन और मन दोनों को थकाने वाला हो जाता है। कोई आपकी जिंदगी में आ रहा है या जा रहा है, उन सब के बीच आपको शांति को चुनना ही पड़ेगा। फिर सारी कोशिश आप ही क्यों करें, कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। दूसरों को खुश करने की एक तरफा कोशिश में अक्सर आप खुद ही को खो देते हैं। कई बार लगता है कि हमारी बात सही होती है, पर लोगों को गलत क्यों लगती है। हमारी मंशा गलत नहीं होती, पर हमारे शब्द दूसरों को सहन ही नहीं होते। कई बार लोगों को आपकी करुणा की जरूरत होती है। रौबीले अंदाज में बात करने के बजाय वे आपको तब सुनते हैं जब आप उनसे करुणा में बात करें। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, न कि उन्हें भाषण दें। बाहर का माहौल ही जब परेशान करने वाला हो तो भीतर बेचैनी, चिंता और अवसाद होगा ही ना। इस बड़े अजीबोगरीब भरे माहौल में जब आप दूसरों के दुख से दुखी हैं, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, तो घबराएं नहीं। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो ठीक है, अपने दुख से भागे नहीं। बस याद रखें कि जो भी महसूस हो रहा है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। दुख का यह समय भी गुजर जाएगा, सब कुछ जल्द ही ठीक होगा।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के ये भजन जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। ये छोटी बात नहीं है। कई बार हम इसके लिए दूसरों को आभारी भी मानते हैं, दूसरों को थैंक्स भी कहते हैं, लेकिन कृतज्ञता इससे भी ज्यादा गहरा भाव है। हमें किसी चीज को अच्छा या बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम चुनौतियों को भी स्वीकार करें तो बढ़िया होगा। हर एक नया पल एक नया उपहार है, ऐसा मानकर चलिए। कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव जीवन पर हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, कुछ समय बाद दूसरे लोग भी उनमें कम इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो लगातार भागदौड़ वाली जीवन शैली हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना जरूरी नहीं है भाई। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हां हां हां हां कह देना कोई खास फायदेमंद नहीं है भाई। अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात लगातार बांधे हुए है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है भाई। भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता हो, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। अगर कुछ है जो लगातार आगे बढ़ने से आपको रोकता है ना, तो उसे तो जरूर छोड़ दीजिए। हो सकता है जो बात दुख दे रही हो वह बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना आसान ना हो, लेकिन आपका आज भी आपके इंतजार में बैठा है। अरे भैया, जो भी चीजें होती हैं उनमें सब कुछ हम काबू नहीं कर सकते। उन चीजों के साथ अपने संबंधों को बदल डालिए।